मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि तदनुसार 25 जून सन 2026 सुबह के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु

0: निरीक्षण करेगी। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे अश्विनी भिड़े, जानी बाबू, अनुज जलोटा और साथियों ने। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:25 हुए हैं। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रामानुजाचार्य के विचार।
1: मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों ही सत्य हैं। ब्रह्म के अचित अंश से शरीर की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वो नित्य होता है, वो भी ईश्वर का ही अंश है। शरीर और आत्मा दोनों ही अंश होने के कारण सीमित होते हैं, इसलिए आत्मा को उपनिषदों में जो सर्वव्यापी कहा गया है उसका स्थूल अर्थ नहीं लेना चाहिए। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो प्रत्येक अचित या भौतिक तत्व में प्रवेश कर सकती है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो अणु है। यदि आत्मा को महत या अणु कुछ भी नहीं माना जाए तो उसे सावयव वस्तु की तरह मध्यम परमाणु वाला और अतएव विनाशशीलता मानना पड़ेगा। आत्मा का चैतन्य औपाधिक नहीं है, अर्थात शरीर संयोग पर आश्रित नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है और अवस्था में उससे विद्यमान रहता है, लेकिन ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। आत्मा धर्मी है, सुषुप्त अवस्था में भी आत्मा को यह ज्ञान रहता है कि मैं हूं, और इसी अहम शब्द के द्वारा सूचित होने वाले पदार्थ को आत्मा कहते हैं। आत्मा का बंधन कर्म का परिणाम है। कर्म के फलस्वरूप आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। शरीर युक्त होने पर आत्मा का चैतन्य शरीर और इंद्रियों से बद्ध हो जाता है। यद्यपि आत्मा अणुरूप है तथापि ये शरीर के प्रत्येक भाग को चैतन्य युक्त कर देता है। उस चैतन्य युक्त शरीर को ही आत्मा अपना रूप मानने लगता है। अनात्म विषय में इस आत्मबुद्धि को ही अहंकार कहते हैं। कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति का उदय होता है जिससे मुक्ति मिलती है। कर्म से अभिप्राय है वेदोक्त कर्मकांड, अर्थात वर्णाश्रम के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म। इनका आजीवन कर्तव्य बुद्धि से बिना स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति की कामना से आचरण करना चाहिए। इस तरह का निष्काम कर्म पूर्व जन्मार्जित उन संस्कारों को दूर कर देता है जो ज्ञान की प्राप्ति में बाधा के स्वरूप होते हैं। वेदांत साधक को जगत का वास्तविक तत्व बतलाता है, तब उसे बोध होता है कि वो शरीर से भिन्न और वस्तुतः ईश्वर का अंश है। यही ईश्वर परमात्मा जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाला है। उसे यह भी अनुभव होता है कि मुक्ति केवल अध्ययन और तर्क से नहीं होती किंतु ईश्वर की करुणा करने से होती है। मुक्त का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाना नहीं। मुक्त आत्मा शुद्ध निर्मल ज्ञान से युक्त और दोषों से रहित हो ब्रह्म के सदृश हो जाता है। उपनिषदों में यह कहा गया है कि मुक्त आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, उसका यही अर्थ है।

चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रामानुजाचार्य के विचार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुनेंगे गर्मी हेतु चारा हरा चारा विषय पर डॉक्टर डीएस वर्मा की वार्ता।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर आप सुन सकेंगे। दांत खाज खुजली के कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनेंगे पॉप सिंह और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। आपके गायक साथी रहेंगे जगदीश और संगत करता रहेंगे साइड रिदम पर राजकुमार पांडे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित निखिल बनर्जी से राग बिलास खानी तोड़ी में आलाप का सितार वादन। कार्यक्रम आज के कलाकार में 11:00 आज के कलाकार रहेंगे फिल्म संगीतकार मदन मोहन।

समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर आज का विषय रहेगा लोकतंत्र की रक्षा में संविधान का महत्व संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में।

दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दोपहर 1:15 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा लोकतंत्र का रक्षक हमारा संविधान। इसी के साथ आप सुनेंगे दीप्ति सबनानी से वार्ता, लोकतंत्र की रीढ़ है जागरूक मतदाता। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे शुभ्रा तलेगांवकर का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर सुनेगा आशा भोसले के गाए कुछ गीत।

दोपहर 3:30 पर रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्वस्थ दीर्घायु के लिए योग विषय पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत। शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा नौवाहन स्वतंत्रता। इसी के साथ आप सुनेंगे अनिंद्र सिंह की वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा नशा मुक्ति की पहली शर्त है आत्मसंयम। शाम 6:00 ग्राम्य लोक कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता विषय पर। इसी के साथ आप सुनेंगे कैसे करें प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर डॉक्टर मोहनलाल दोतानिया से अनिंद्र सिंह की बातचीत।

मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे संविधान हत्या दिवस विषय पर चर्चा। शाम 7:10 पर कार्यक्रम विविधा में सुनी जा सकेगी डॉक्टर अनिल कुमार यदुवंशी की वार्ता। विषय रहेगा किशोरों में बढ़ती पलायनवादी प्रवृत्ति। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका सृजना कार्यक्रम, जिसमें वार्ता सुनी जा सकेगी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वार्ताकार रहेंगे प्रोफेसर रामवीर सिंह। इसी के साथ सुनेगा पवित्र कुमार शर्मा से कहानी जल देवता, और अंत में सुना जा सकेगा डॉक्टर त्रिमोहन शाक्य तरल से काव्य पाठ। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे गर्मियों हेतु चारा हरा चारा विषय पर डॉक्टर डीएस वर्मा की वार्ता। अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं डॉक्टर डीएस वर्मा की वार्ता और वार्ता का विषय रहेगा गर्मियों हेतु हरा चारा।
1: किसान भाइयों, गर्मियों में पशुओं के लिए हरे चारे की बहुत कमी रहती है, जिसका दूध देने वाले पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए गर्मियों में चारा हेतु प्रमुख रूप से ज्वार, लोबिया, मक्का व बाजरा फसलों को चारे के लिए बोया जाए। चारे हेतु बहुकट ज्वार की ऐसी किस्मों को बोना चाहिए जिसमें HCN यानी जहर की मात्रा बहुत कम होती हो तथा जिन्हें चारे के लिए कई बार काटा जा सकता हो। इसकी प्रमुख किस्में MFHH3 व MFHH4, PSSG 111, MP चरी, पंथ चरी व UP चरी नंबर 1 व UP चरी नंबर 2 उपयुक्त हैं। इन किस्मों की बुवाई आलू व सरसों से खाली खेतों में फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से मार्च तक करना लाभदायक रहता है। इसका 30 से 40 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। ज्वार को बोते समय 100 किलोग्राम DAP को 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बुवाई हमेशा कुंड से करना उचित रहता है। पहली सिंचाई 20-25 दिन बाद करें, बाकी की सिंचाई प्रत्येक कटाई के बाद अवश्य करें। अधिक गर्मी पड़ने पर सिंचाई का अंतर 10-15 दिन रखें। हर कटाई के बाद चारे हेतु फसल में 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर लगाते रहें। बहुकट वाली ज्वार में पहली कटाई 50-60 दिन बाद ही करनी चाहिए। इसके बाद हर 35 से 40 दिन बाद काटने योग्य हो जाती है। इस प्रकार इससे कुल 3 कटाइयां ली जा सकती हैं, जिससे लगभग 300 से 400 कुंटल हरा चारा 1 हेक्टेयर से मिल जाता है। चारे के लिए दूसरी फसल है लोबिया। यह एक दाल वाली फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 20% रहती है, इसलिए अन्य चारों की अपेक्षा दुधारू व कार करने वाले पशुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पशुओं को इसकी भरपेट मात्रा खिलाई जाए तथा थोड़ा सा भूसा दिया जाए तो पशु बिना रातब खिलाए ही 5-6 लीटर दूध प्रतिदिन देता रहेगा। चारे हेतु लोबिया की कई महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे रशियन जॉइंट, UPC 5286, UPC 5287, FOS नंबर 1, लोबिया नंबर 10 व EC 4216। इन किस्मों की बुवाई मार्च से अप्रैल माह तक की जा सकती है। इसकी बुवाई के लिए 30-35 किलोग्राम बीज प्रयोग करना उचित रहता है। बुवाई हमेशा लाइनों में 30-35 सेंटीमीटर की दूरी पर 6-8 सेंटीमीटर लाइनों में गहराई पर करें। लोबिया को अन्य चारे वाली फसलों के साथ मिलाकर भी बोया जा सकता है। मिलाकर बोने पर इसकी बीज की मात्रा 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। लोबिया में पहली सिंचाई बुवाई के 15 दिन बाद करनी चाहिए। मार्च में बोने पर कुल 4-5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। 2.5 मास यानी फली आने के बाद फसल कटाई योग्य हो जाती है। दूसरी कटाई अच्छी व जल्दी लेने हेतु पहली कटाई को भूमि से 8-10 सेंटीमीटर ऊंचाई से करें। इस प्रकार इससे लगभग 350 कुंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर उपलब्ध हो जाता है। गर्मियों में चारे के रूप में मक्का की फसल को भी पशु बड़े स्वाद से खाते हैं। इसका चारा मुलायम होता है, इसमें पौष्टिकता

0: सिल्क यानी सूत के आने पर अधिक होती है। चारे के लिए मक्का की अफ्रीकन टॉल प्रजाति सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा संकर मक्का में प्रोटीना, गंगा 2, गंगा 5 व गंगा 7 तथा सकुल प्रजातियों में मक्का चारे में किसान और विजय एवं देसी मक्का में टाइप 41 की बुवाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में प्रयोग करें। चारे हेतु बुवाई फरवरी के दूसरे पखवाड़े से शुरू की जाती है। बुवाई लाइनों में 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही करें। इसकी बुवाई के समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करने से चारे की भरपूर कटाई मिलती रहती है। इसके बाद 80 किलोग्राम यूरिया 30 दिन बाद वह 80 किलोग्राम यूरिया सिल्क यानी सूत अवस्था पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर दें। सिंचाई व्यवस्था 8 से 10 दिन के अंतर पर करते रहें। इसकी चारे पहली कटाई 70 से 75 दिन बाद ही करें, क्योंकि इस अवस्था पर फसल में मादा मंजरियां निकल आती हैं। मक्का से हरे चारे की औसत उपज लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। इसके अलावा चारे के लिए बहुकट बाजरा की फसल है, जिसको किसान आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा उगाते हैं। यह एक अधिक कल्ले फूटने वाली व शीघ्रता से बढ़ने वाली रोग निरोधक चारे की फसल है। इसको सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में बड़ी आसानी से बोकर अच्छा चारा ले सकते हैं। इसको लोबिया के साथ भी मिलाकर बोया जा सकता है। चारे हेतु बहुकट बाजरे की कुछ संकर यानी हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे संकर चारा बाजरा नंबर 1 जो प्रो एग्रो कंपनी का है। इसके अलावा महिको या अन्य कंपनियों की किस्में बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। चारे हेतु बाजरा की बुवाई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। बोते समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बाजरा से हरे चारे के रूप में लगभग 4-5 कटाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। बाजरा की पहली कटाई लगभग 1.5 महीने बाद ही करें। इसके बाद की कटाई 1-1 माह पर करते रहें। प्रत्येक कटाई के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई का अवश्य ध्यान रखें। चारे हेतु बाजरा की बुवाई फरवरी से लेकर अप्रैल के प्रथम पक्ष तक की जा सकती है। बाजरा को लोबिया फसल के साथ भी बो सकते हैं। बोते समय 2 लाइन बाजरा की, 1 लाइन लोबिया की बोएं। बाजरा से लगभग 300 से 400 कुंटल चारा प्रति हेक्टेयर आसानी से मिल जाता है। बहुकट चारे वाली फसलों में कटाई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कटाई सदैव जमीन से 7 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करें, ताकि फुटाव वाली कलियां न कट पाएं और फुटाव जल्दी हुआ अच्छा हो जाए। इस तरह चारे की फसल उगाते समय इन बताई गई बातों को अमल में लाकर हमारा पशुपालक गर्मियों में हरा चारा उत्पादन करेंगे तो निश्चित ही पशुओं से दुग्ध उत्पादन उचित मिलता रहेगा और चारा का अच्छा उत्पादन हो सकेगा।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे गर्मियों हेतु हरा चारा विषय पर डॉक्टर DS वर्मा की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया।

0: World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दांत खाज खुजली के कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता।
2: आज मैं आपके सामने दांत खाज खुजली के बचाव एवं उपचार के विषय में अपने विचार लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, दांत या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस गर्म एवं उमस वाले मौसम में ज़्यादा पनपते हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमज़ोर होती है या हमारी हाइजीन पुअर होती है, जैसे कि नित्य स्नान न करना या अपने खान पान में पौष्टिक आहार को सम्मिलित न करना, तब ये इन्फेक्शंस हमें जल्दी पकड़ते हैं। ये सिर से लेकर पैर तक कहीं भी पनप सकते हैं। प्राय सिर में फंगल इन्फेक्शंस 14 साल से कम आयु के बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। इसमें जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उस जगह बाल तक गायब होने लगते हैं। ऐसे ही जांघों का फंगल इन्फेक्शंस, जिसे हम धोबीज इच कहते हैं, ये मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही पैर का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा देर तक जूते पहने होते हैं या जिनमें पैरों के उंगलियों के बीच में विशेष तौर से पसीना बहुत देर तक ठहरता है। इसलिए इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। अक्सर दांत में खुजली एक प्रमुख लक्षण होता है और ये बढ़ते समय एक गोलाकार का रूप ले लेता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन को आम भाषा में हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। जय यह शरीर के बहुत सारे हिस्से को प्रभावित करता हो या बहुत तेज़ी से जब फैलता है, तो ये डायबिटीज़ या मधुमेह एवं HIV इन्फेक्शन का संकेत देता है। अतः दांत से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। बदन पर गीला वस्त्र न धारण करना व बंद जगहों जैसे कि कांख, रागें व पैर की उंगलियों के बीच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका संभव हो तो अपने ऑफिस में कुछ देर के लिए अगर आप जूते मोज़े उतार के बैठ जाएं तो ये अच्छा होगा, या मोज़े जो हैं कॉटन सॉक्स पहने और हमेशा सूखे मोज़े पहने, कभी नमी ना हो। आजकल इन दांत के इलाज या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का इलाज अमूमन 6 से 8 हफ्तों में बड़े आराम से संभव है। पर हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी केमिस्ट के द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज ना लें, वरना ये और विकृत हो जाता है। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसे ही सूखी खाज या स्केबीज भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो, एक बंद कमरे में या छोटे सी जगह में कई सारे रोग रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में ये स्केबीज बहुत कॉमन है। इसका भी मुख्य लक्षण अत्यंत खुजली होना, विशेष तौर पर सोते समय। ये चूंकि एक छूत की बीमारी है, अतः ये परिवार के और सदस्यों को भी प्रभावित करती है। इसका भी इलाज एक विशेषज्ञ द्वारा सुचारू रूप से संभव है। तो मैं अंत में एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अवस्था में जब भी दांत खाज या खुजली हो, तो केमिस्ट या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कभी भी इलाज न लें, क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब कोई भी दवा लेते हैं तो इसमें अक्सर स्टीरॉयड नामक औषधि होती है, जो आपके मूल जो रूप है उस बीमारी के स्वरूप को भी बदल देती है। इससे बात इसको ठीक करने में और परेशानी होती है, आपका खर्चा भी बढ़ता है, समय भी बढ़ता है, और कभी कभी विशेषज्ञ को भी इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको दांत खाज या खुजली आपको परेशान करे, तो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही इसका उपचार के लिए प्रयास करें।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दांत खाज खुजली के कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: वकालती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है।

0: और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में

0: मामलों में ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संसुष्टि की गई है।
2: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
3: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, इस क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में, उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
4: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी

0: है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
1: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालोनजादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
2: तो भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
1: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
3: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
6: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए।

0: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार।

क्रेडिट कार्ड से ठगी पर बैंक 5 दिन में रकम लौटाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी पर बैंक 5 दिन के भीतर शैडो रिवर्सल यानी रकम अस्थायी रूप से पीड़ित के खाते में हस्तांतरित करें। डिजिटल लेन देन में ग्राहकों की जवाबदेही सीमित करने को आरबीआई ने संशोधित नियम जारी कर दिए हैं।

के 391 पद बढ़े, 1731 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिक भर्ती 2025 में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है और ये बढ़ाकर 1731 हो गई है। एसएससी ने 1340 रिक्त पदों की सूचना दी थी, उसके बाद से आयोग को 1731 पदों की सूचना मिल चुकी है। प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती के लिए पाठ्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया। शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रधानाचार्य के 1500 और प्रधानाध्यापक के 1000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना चयन आयोग को भेजी जा चुकी है।

लालकुआ वड़साल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने लालकुआ वड़साल स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ के अनुसार ट्रेन लालकुआ से 9 जुलाई तक हर गुरुवार, वड़साल से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार को चलेगी। सीसीसी प्रशिक्षण के लिए 10 जुलाई तक आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक का अंतिम समय है। प्रयागराज दादर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि 10 जुलाई तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। ट्रेन प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होते हुए जाएगी। सम्मान निधि चाहिए तो 30 जून तक केवाईसी कराइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को 30 जून तक ई केवाईसी करानी होगी। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक ने बताया कि केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है। सुविधा जन सेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। मुंबई काठ गोदाम साप्ताहिक ट्रेन अब नियमित चलेगी। रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काठ गोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और काठ गोदाम से गुरुवार को चलेगी। ये मथुरा जंक्शन होकर संचालित होगी। एक सेकेंड एसी, 4 थर्ड एसी, 7 स्लीपर और 4 जनरल कोच इसमें लगे हैं।

0: भौतिक सूचना के अनुसार हृदय श्रेष्ठी पुत्री योगेंद्र सिंह निवासी नगला ब्लू थाना अलाऊ जनपद मैनपुरी दिनांक 29 मई 2026 लापता है। इनका रंग गेहूं हुआ, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य लंबाई 5 फुट और उम्र 21 वर्ष है। इन्होंने ब्राउन कलर का सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना अलाऊ जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार सविता पुत्री गिरीश चंद्र पत्नी आशीष निवासी भैंस रौली थाना भोगांव मैनपुरी दिनांक 20 मई 2026 लापता है। इनका रंग गोरा, चेहरा गोल लंबा, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 1 इंच और उम्र 37 वर्ष है। इन्होंने पीले रंग का सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना भोगांव मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार शिवानी पुत्री विनोद कुमार निवासी ईकरी थाना ओंछा जनपद मैनपुरी दिनांक 16 मई 2026 से लापता है। इनका रंग गेहूं, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य, कद 5 फुट 3 इंच, उम्र 20 वर्ष है। इन्होंने पीला रंग का सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना ओंछा जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार भूमि पुत्री रामबरन निवासी सकत थाना बेवर जनपद मैनपुरी दिनांक 21 मई 2026 से लापता है। रंग गोरा, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य और कद 5 फुट, उम्र 19 वर्ष है। इन्होंने काला सलवार सूट पहन रखा है। इस कोई भी युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बेवर जनपद मैनपुरी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: मुहर्रम पर यातायात में किया जाएगा फेरबदल। मकबान टॉकीज से सुल्तानगंज की पुलिया के बीच सर्विस रोड पर करबला की तरफ वाहन नहीं चलेंगे। सभी वाहन मकबान टॉकीज फ्लाईओवर से सुल्तानगंज की पुलिया होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। पाए चौकी से फूलों का ताजिया निकलता है। धाकरान सदर भट्टी चार पहिया ई रिक्शा और ऑटो पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। पालीवाल पार्क से सुल्तानगंज की पुलिया की ओर वाहन नहीं जाएंगे। सभी वाहन जीवनी मंडी से होकर गुजारे जाएंगे। सुल्तानगंज की पुलिया से पालीवाल पार्क की तरफ वाहन नहीं जाएंगे। सभी वाहन जीवनी मंडी से निकलेंगे। वाटरवर्क्स कमलानगर से विजयनगर भगवान टॉकीज जाने वाले वाहन सुल्तानगंज फ्लाईओवर से गुजारे जाएंगे। सुल्तानगंज पुलिया ओवरब्रिज के नीचे सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। एदनाथ दौला से अंबेडकर पुल होते हुए वाहन नहीं आएंगे। सभी वाहन वाटरवर्क्स होते हुए जाएंगे। स्ट्रेची ब्रिज से दोपहिया और हल्के चार पहिया वाहन एदनाथ दौला की तरफ

जा सकेंगे। लोहा मंडी से बोदला जाने वाले वाहन मध्य कटरा से करकुंज होकर गुजारे जाएंगे। बोदला से लोहा मंडी कारगिल पेट्रोल पंप से करकुंज होकर जा सकेंगे। रुई की मंडी भोगीपुरा सीओडी चौराहे से ऑटो और ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। सेंट जॉन्स चौराहे से ऑटो और ई रिक्शा लोहा मंडी कोठी मीना बाजार की तरफ नहीं जाएंगे। एक जुलाई के बाद ही गहराएंगे बादल। ताजनगरी में इस महीने मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद टूट गई है। अब एक जुलाई के बाद ही बादल गहराएंगे। इस हिसाब से शहर में मानसून का प्रवेश करीब 10 दिनों की देरी से होने से माना गया है। इस सीजन बारिश के बीच सूखे वाले दिन भी बढ़ सकते हैं। आमतौर पर 25 जून को मानसून की बारिश शुरू होती है, इससे पहले प्री मानसून के बादल भी होते हैं। इस सीजन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश और तूफान जरूर हिस्से में आए।

संविदा चालक के लिए रोजगार मेला 29 को, रोडवेज में अनुबंध पर 180 चालकों की भर्ती को 29 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि मेला सुबह 10 बजे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय आगरा फोर्ट डिपो आईएसबीटी पर लगेगा। आवेदनकर्ता की आयु 23 वर्ष 6 माह से अधिक, लंबाई 5 फीट 3 इंच से अधिक और शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। 2 वर्ष पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य है। चयनित चालकों को 2.20 रुपए की कीमत भुगतान और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

0: मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्रे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात

0: राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे इस समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response.

0: कन्वेंशन डीसीसी के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तिजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तिजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिन्यान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक्किदा पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से चौथे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद टी20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की जरूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक्वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबार में नुमाया है। अखबार की दीगर अहम बैन अवी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थीं। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, अलका याग्निक, रूप कुमार राठौर, शंकर महादेवन के स्वर में फिल्म मेला का ये गीत। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत था अनु मलिक का।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा

0: जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खामोशी द म्यूजिकल फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी थी अलका याग्निक और हरिहरन ने। मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था जतिन ललित ने।

0: मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओ।
1: कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को फिल्म दिलवाले में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लखनऊ से जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल

0: है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है, और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
1: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी, और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उनको रिवाइवल के प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए, जिसमें जो पहले 2 सुगर मिल रिवाइव किए गए।
0: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान, कृषि वैज्ञानिक, अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिलाधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
2: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे, जिनकी निगरानी के लिए 1400 के ऊपर के CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। टुलूस की जो संख्या है वो 127 है। इसको लेकर के पुलिस की सभी ड्यूटीज लग गई है, एज वेल एज प्रशासन की ओर से भी सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है।
0: बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असम प्रभारी और पूर्व लोकसभा सांसद हरेश द्विवेदी ने बस्ती स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। योग दिवस इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बस्ती जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में मानक की चेकिंग की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत एंट्री और एग्जिटिंग की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और DIOS लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले, तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
3: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
4: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डायट परिसर में आयोजित 4 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णालान में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत

0: थे। केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने बताया,
1: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जो जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से सुबह 5:25 पर ट्रेन यहां से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
0: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदी

0: अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं बीते दिन राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्यप्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिलाधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
1: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल।
4: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म गाइड में। शैलेंद्र की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था एसडी बर्मन ने।

0: श्रोतों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म लेकिन का ये गीत। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था हृदयनाथ मंगेशकर ने। इस अंतराल के तुरंत बाद आप सुनेंगे फिल्म दिल की राहें का ये गीत, जिसे आवाज देंगी लता मंगेशकर। गीत लिखा है नक्श लयालपुरी ने और संगीत है मदन मोहन का।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में फिल्म अनपढ़ से। राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है मदन मोहन ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9:45 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पॉप सिंह और साथियों के आवाज में। साथी हैं जगदीश और संगत करता है साइड रिदम पर राजकुमार पांडे। आइए सुनते हैं इनके स्वर और संगीत में कुछ लोक संगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पॉप सिंह और साथी जगदीश के स्वर में कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे थे साइड रिदम पर राजकुमार पांडे। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीरो का ये गीत, जिसे आवाज दी थी अभय जोधपुरकर ने और संगीत था अजय अतुल का। आइए अब सुनते हैं जैस्मिन सैंडलर्स और सतेंद्र सरताज के स्वर में फिल्म धुरंधर द रिवेंज का ये गीत, संगीत है शाश्वत सचदेव का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम को फिल्म सरबजीत में। इस गीत को लिखा था जानी और रश्मि विराग ने और संगीत था जीत गांगुली का। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह को फिल्म कलंक में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खाकी का ये गीत, जिसे गाया था सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था राम संपत ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत साधना सरगम और मुर्तजा कादिर के स्वर में फिल्म साथिया से। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है AR रहमान का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित निखिल बनर्जी से राग बिलासखानी तोड़ी में आलाप का सितार पर वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग बिलास खानी तोड़ी में आलाप। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन साहब की फिल्मों के गीत। मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को हुआ था। 1950, 60 और 70 के दशक के दौरान आपने भारतीय फिल्मों में संगीत निर्देशन का कार्य किया। हिंदी बॉलीवुड के सबसे मधुर और कुशल संगीत निर्देशकों में से एक नाम इनका भी है। इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ बेहतरीन गजलें भी लिखी और अपने कार्य के दौरान लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी साहब और तलत महमूद जी के साथ इन्होंने कार्य किया और इन्हीं लोगों के साथ इनका अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं के संगीत निर्देशन में फिल्म हकीकत का ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की और इसे लिखा है कैफी आजमी ने।

मखमली आवाज और बेहतरीन गजलें, इसी से पहचान बनी मदन मोहन जी की। इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपना बेहतरीन संगीत दिया। इनका जन्म बगदाद इराक में हुआ था। आपके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस में महालेखाकार के रूप में तैनात थे। बचपन से ही मदन मोहन जी की संगीत में रुचि थी। इनके पिता चाहते थे कि ये आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन संगीत के प्रति इनका प्रेम इन्हें खींचता रहा। आपने लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया, जहां इनकी मुलाकात हुई तलत महमूद और बेगम अख्तर जैसे संगीत के दिग्गजों से। इनकी प्रेरणा रही संगीतकार एसडी बर्मन साहब की संगत। बर्मन साहब ने इनको फिल्मों के लिए काफी प्रोत्साहित किया और इन्हीं से प्रेरणा पाकर इन्होंने फिल्मों के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। बतौर संगीतकार 1950 में फिल्म आंखें आई, जिसने मदन मोहन साहब ने अपने करियर की शुरुआत की। इनके कुछ सदाबहार गीत और गजलें रहे, जिसमें शामिल है फिल्म अनपढ़ का आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, फिल्म वो कौन थी से लग जा गले, और मौसम फिल्म का दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म अनपढ़ का ये गीत आपकी नजरों ने समझा।

सन 1970 में फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन जी को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आप अपने काम को बहुत ही लगन के साथ किया करते थे। काम में परफेक्शन इनको काफी पसंद थी और इनका मानना यह था कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए पूर्ण निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। जब कभी भी किसी गीत की ये धुन बनाया करते थे तो उस धुन को ये बार बार गाया करते थे, सुना करते थे। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि एक गाने को बेहतरीन बनाने के लिए आप कई धुनें बनाते थे और उसमें से जो सबसे उम्दा होती थी आप उसका चुनाव करते थे। 51 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य ठीक न रहने की वजह से और रोग का शिकार होने की वजह से इनका निधन हो गया और इनके निधन के 3 दशकों के बाद फिल्मकार यश चोपड़ा ने फिल्म वीर ज़ारा में इनकी धुनों को इस्तेमाल किया और ये संगीत बहुत पसंद किया गया। एक फिल्म थी वो कौन थी, इस फिल्म का गीत भी काफी प्रसिद्ध हुआ। गीत के बोलते लग जा गले कि फिर वो हंसी रात हो ना हो, इसे लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म वीर ज़ारा में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर इनके संगीत के लिए इनको प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए आईफा अवार्ड प्रदान किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर आपको मरणोपरांत फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

कितनी बड़ी बात है ना कि किसी इंसान के नाम को इतना सम्मान मिला कि उसकी दुनिया से जाने के बाद भी उसकी पहचान, उसकी शख्सियत को सम्मानों से नवाजा गया। वास्तव में यही तो एक व्यक्तित्व की पहचान होती है, उसका महत्व होता है, जो सिर्फ उसके जीते जी नहीं बल्कि उसके दुनिया से जाने के बाद भी उसके सुंदर कार्यों की वजह से, उसकी निष्ठा, उसकी लगन, उसकी मेहनत और उसके योगदान की वजह से सराहा जाता है, उसके कार्य को याद किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। मदन मोहन जी का बेहतरीन संगीत और उनकी धुनों के जरिए आप हमेशा हम सभी के बीच मौजूद रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार अब समाप्त होता है। कार्यक्रम आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुन रहे थे। दोपहरकालीन सभा के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम में आज का विषय है लोकतंत्र की रक्षा में संविधान का महत्व। आज है संविधान हत्या दिवस। श्रोताओं, कानून का अर्थ है वो शक्ति जो किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। जी हां, मैं एक बार दोहरा देती हूं, शायद आपको पता ही होगा, आप सभी लोग विवेकी हैं। कानून का अर्थ है वह शक्ति जो किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करे, समय और आवश्यकता पड़ने पर उचित और निष्पक्ष मार्गदर्शन करे और देश में कुशल न्याय प्रणाली भी सुनिश्चित करे। संविधान सरकार की संरचना, जनता के अधिकारों और शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह देश का वो सर्वोच्च कानून है जिसका अनुसरण देश में रहने वाले हर आम और खास व्यक्ति को करना होता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका मुख्य उद्देश्य कानून और नैतिकता विरोधी तानाशाही को रोकना, सही कानून का शासन लागू करना और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। समानता, आजादी और किसी भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्ति और रक्षा के लिए संविधान वो शक्ति है जो लोगों को एक सही, समृद्ध और खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। सरकार के अंतर्गत आने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को इसमें स्पष्ट किया गया है। सत्ता की भी कुछ सीमाएं होती हैं और ये सीमाएं भी इसमें दर्शाई गई हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा सन 1975 में देश पर लागू किए गए आपातकाल की याद में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से जुड़े हुए इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 25 जून सन 1975 की रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य मकसद ये है कि उस समय की याद दिलाई जाए जब मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। यह दिन उन लाखों लोगों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए है जिन्होंने उस दौरान गलत व्यवहार का सामना किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष भी किया। साथ ही ये एक संदेश देता है नागरिकों को भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक रहने की प्रतिज्ञा दिलाने का।

सन 1975 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इसे भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मुश्किल और गंभीर समय माना जाता है, जिस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, और यही वजह है कि इस दिन को आधिकारिक तौर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। यह वो समय था जब आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रता का व्यापक निलंबन, संवैधानिक सुरक्षा उपायों का क्षरण, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया और व्यापक उत्पीड़न का दौर प्रारंभ हुआ। श्रोताओं, जरूरत इस बात की है कि आज के समय में युवा पीढ़ी संविधान के महत्व को समझे। हम अगर इतिहास को खंगालें तो हम पाएंगे कि हमारे देश ने और देशवासियों ने समय समय पर तरह तरह की परीक्षाएं दी हैं और बाद में उन परीक्षाओं में कामयाब भी रहे हैं, बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं और उसके बाद अपनी हिम्मत और अपने जज्बे को लेकर हमारा देश टिका रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। संविधान हमें हमारे अधिकारों की याद दिलाता है, हमें जागरूक करता है और हमें बताता है कि हमें किस तरह से उनके प्रति सचेत रहना है।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ये इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये कहा जाता है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपने अतीत की जानकारी होना भी बेहद आवश्यक है। हमारे बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को, अपने इतिहास के बारे में जानना समझना चाहिए। अतीत के बारे में, आज से काफी वर्षों पहले क्या हुआ था, इन घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। आपातकाल क्यों लागू किया गया था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कोई भी ऐसा घटनाक्रम जो अतीत में हुआ है और जिसका प्रभाव नकारात्मक पड़ा हो, उसको दोबारा ना दोहराया जाए, इस बात का ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र की पवित्रता की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है और उसका एक सकारात्मक प्रभाव।

भाव है। लोकतंत्र हम सभी के लिए बेहद जरूरी है और इसकी पवित्रता, इसकी निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए भी हर एक का बराबर का कर्तव्य है। भारत लोकतंत्र की जननी, भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आपातकाल की घटनाओं और परिणामों की क्रमवार जानकारी भी देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करना हमेशा से जरूरी है और जरूरी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र से ही न्याय कायम है। चुनावी पारदर्शिता और इसके साथ साथ निष्पक्ष न्याय प्रणाली की बेहद आवश्यकता हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि अगर न्याय प्रणाली मजबूत है, सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान है और किसी भी तरह के किसी के अधिकार और स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं है, तो ऐसे में देश के अंदर हर नागरिक अपने सम्मान, स्वतंत्रता और खुशहाली के साथ जी पाएगा।

सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम का विषय था लोकतंत्र की रक्षा में संविधान का महत्व। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों

0: वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात? सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों

0: के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधि

0: गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
0: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधु, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
5: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
5: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
5: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
5: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
5: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
5: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
5: प्रश्नोत्तरी पद्धति।

0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव के मीटर्स पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। ये पहला गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म दिल ही तो है से, फिल्म द स्काई इज पिंक से।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

मीका सिंह, भाव्या पंडित और योहानी सिंह के स्वर में सन ऑफ सरदार फिल्म का ये गीत आपने सुना। तर्ज थी हिमेश रेशमिया की। अगला गीत सुनिए श्रेया घोषाल और बोनी चक्रवर्ती की आवाज में। शांतनु मोहित्रा ने इसे संगीत दिया है। बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने। फिल्म का नाम है बॉबी जासूस।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनिए फिल्म तुम बन टू से अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत है अंकित तिवारी का।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म तुम बिन टू से। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव के मीटर्स पर और 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों

0: प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति. ईडी ऑफिशियल सेड द अक्यूज्ड अलेजेडली इंड्यूस्ड मेंबर्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी टू सरेंडर देयर राइट्स ओवर अप्रोक्सीमेटली 41,544 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड लोकेटेड एट अकबरपुर बहरमपुर इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बाय प्रॉमिसिंग रेजिडेंशियल फ्लैट्स अंडर अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. In Venezuela, a state of emergency has been declared following back-to-back earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude that caused multiple buildings to collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, President Delcy Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Rescue and recovery operations are underway in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. بھارتی جنتا پارٹی 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منا رہی ہے. ملک بھر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا مقصد آئین اور جمہوری اقدار کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں ایمرجنسی کے 51ویں برسی کے موقع پر سمویدھان ہتیا دیوس کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کی. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا,
2: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है, योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना. परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं.
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राममोहन राइडू ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से पहली EZ कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया. दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट भारत के कोने कोने को दुनिया से बगैर किसी रुकावट के जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है. ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत मुसाफिर अपनी आखिरी बैनुल अक्वामी मंजिल के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरी कर सकते हैं. इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में किस शहर में रहते हैं, आप अपने बैनुल अक्वामी सफर का आगाज अपने शहर से ही कर सकते हैं.
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को ये हब एंड स्पोक मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं. हवाई यात्रा या एयरपोर्ट आने से आपको पता है किस तरह से वो शहर को एक ताकत मिलती है, वो छोटा शहर नहीं रहता उसके बाद.
1: LDA ने लखनऊ के अलीगंज आतशजदगी मामले की महकमा जाति जांच करके कसूरवारों की शनाख्त कर ली है. लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी उसका नक्शा 2014 में मंजूर किया गया था. इसके बाद 2016 में LDA ने मेयार पर पूरा न उतरने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया जिसे बाद में वापस ले लिया गया. महकमा जाति इंक्वायरी में 19 इंजीनियर्स और 6 PCS सतह के अफसरान की जानिब से गफलत पाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है. आग में जख्मी होने वाले 7 अफराद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इलाज के बाद फारिग कर दिया गया. दरी असना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम रियासत भर में कोचिंग इदारों की मुसलसल जांच कर रही है. गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि मुआयने के दौरान 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है. अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या इंतजामिया ने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुआयना करने के लिए 2 टीमें तश्कील दी हैं जो न सिर्फ फायर सेफ्टी की जांच कर रही हैं बल्कि लोगों में बेदारी भी पैदा कर रही हैं. वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे. यहां वो धनघटा तहसील के बांसवारी में वाक़े श्री बैजूनाथ धाम में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 139 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बनी

0: याद करेंगे। इसके साथ ही वजीर आला प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को रजामंदी दे दी है। रियासती हुकूमत में वजीर ममलिकत कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS को कॉरिडोर मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई सिमत दिलाने वाला दूरंदेश कदम साबित होगा। महकमा मौसमियात ने कल से रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने 28 जून तक मशरकी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान है। भारत में ताजिकिस्तान के सफीर बोबोल काली नजदान ने कल रामपुर में रजा लाइब्रेरी और म्यूजियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहां महफूज शुदा नादिर नुस्खे हिंदुस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका सकाफती विरसे को समझने के लिए बहुत अहम हैं। रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर पुष्कर ने कहा कि ताजिकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती और तालीमी तआवुन को फरोग देने के लिए जल्द ही एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: कार्यक्रम घर संसार सुन रही सभी बहनों को उनकी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार।

कार्यक्रम घर संसार में आपका स्वागत है। बहनों, हम और आप भारतवासी हैं। हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। लेकिन इस शासन को सुचारू, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाए रखने के लिए एक लिखित मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो हमारा संविधान है। बहनों, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान ही लोकतंत्र का रक्षक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन प्रमुख अंग हैं। इनकी शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से विभाजित किया है संविधान ने। इस तरह सत्ता का कोई भी एक केंद्र निरंकुश नहीं हो सकता। बहनों, हमारा संविधान नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और समानता की स्वतंत्रता देता है। अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। संविधान के अनुसार देश के बड़े से बड़े औहदे पर बैठे व्यक्ति से लेकर एक सामान्य नागरिक तक सभी कानून के समक्ष समान हैं। बहनों, इतनी विशेषताओं वाले हमारे देश के संविधान के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। जी हाँ, सन 1975 25 जून की वो रात, लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ते हुए अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया और आपातकाल की घोषणा की गई। भारतीय संविधान में आपातकाल एक विशेष प्रावधान होता है जो देश के सामने किसी गंभीर संकट जैसे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है। बहनों, 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस दौरान मौलिक अधिकारों,

नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था। 25 जून का यह दिन उन लाखों लोगों और लोकतंत्र रक्षकों के बलिदान, संघर्ष और यातनाओं को स्मरण करने और श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने उस वक्त तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बहनों, लोकतंत्र में जनता की राय मजबूत स्तंभ की तरह कार्य करती है। अभी आने वाला ये गीत भी कुछ ऐसे ही बोल लेकर संगीतबद्ध किया गया है।

बहनों, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूं ही नहीं कहलाता, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि करोड़ों अरबों नागरिकों के विश्वास, अधिकार और भागीदारी का प्रतीक भी है। जनता सरकार को चुनती है अपने मतदान के द्वारा। मतदान केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि संवैधानिक सम्मान है। आइए बहनों, इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए सुनते हैं दीप्ति सबनानी की वार्ता। लोकतंत्र की रीढ़ है जागरूक मतदाता।

संसार में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। उनमें लोकतंत्र या जनतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें जनता के हित के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सारी व्यवस्था का संचालन किया करते हैं। इसी कारण जिन देशों में इस प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है, राजनीतिक शब्दावली में उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार कहा जाता है। यदि लोक या जनता द्वारा निर्वाचित सरकार लोक कल्याण के कार्य नहीं करती, तो उसे अधिक से अधिक 5 वर्षों के बाद बदला भी जा सकता है। 5 वर्षों में एक बार चुनाव कराना लोकतंत्र की पहली और आवश्यक शर्त है। चुनाव में प्रत्येक बालिग अपनी इच्छा

शब्दावली में उन्हें लोक कल्याणकारी राज्य और सरकार कहा जाता है। यदि लोक या जनता द्वारा निर्वाचित सरकार लोक कल्याण के कार्य नहीं करती तो उसे अधिक से अधिक 5 वर्षों के बाद बदला भी जा सकता है। 5 वर्षों में एक बार चुनाव कराना लोकतंत्र की पहली और आवश्यक शर्त है। चुनाव में प्रत्येक बालिक अपनी इच्छा अनुसार अपने मत का प्रयोग करके इच्छित व्यक्ति को जिता और अनिच्छित व्यक्ति को पराजित करके सत्ता से हटा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र में मतदान और चुनाव का अधिकार होने के कारण प्रत्येक नागरिक परोक्ष रूप से सत्ता और शासन के संचालन में भागीदारी भी निभाया करता है। हमारे देश भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है। इस देश में निरपेक्ष और सुचारू चुनाव का जिम्मा भारत निर्वाचन आयोग के पास है। इस निकाय का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे साल 2011 से मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने किया था। इस दिन नागरिकों को अपने कर्तव्यों को याद करवाया जाता है। किसी भी लोकतंत्र की मर्यादा मूल रूप से उसकी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आम नागरिकों को बतलाता है कि उसका एक वोट भी देश के हित में कितना निर्णायक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चुनाव लोकतंत्र के नागरिकों को 5 वर्षों में एक बार अवसर देते हैं कि अयोग्य एवं स्वार्थी प्रशासकों या प्रशासक दलों को उखाड़ फेंका जाए, योग्य और ईमानदार लोगों या दलों को शासन सूत्र संचालन की बागडोर सौंपी जा सके, राजनीतिक दलों और नेताओं को उनकी गफलत के लिए सबक सिखाया और जागरूकता के लिए विश्वास प्रदान किया जा सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए सही राजनीति और लोगों का उचित योजनाओं का चयन एवं विकास संभव हो सके। यह वह अवसर होता है कि जब विगत वर्षों की नीति और योजनागत सफलताओं असफलताओं का लेखा जोखा करने नवीन की भूमिका बांधी जा सके, अन्यथा वह एक बेकार का नाटक से अधिक कुछ नहीं। जागरूक नागरिक होने के कारण हमें उन्हें केवल नाटक नहीं बनने देना है, बल्कि जनजीवन का संरक्षक बनाना है। 1996 में संपन्न चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्मरणीय कहा जाता है। पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में इसे 18 वर्ष तक घटा दिया गया है। इस बदलाव को शामिल किया गया क्योंकि दुनिया भर में कई देशों ने आधिकारिक मतदान उम्र के रूप में 18 वर्ष की सीमा को अपनाया था। उसी समय भारतीय युवा साक्षर और राजनैतिक रूप से जागरूक हो रहा था। 61वें विधेयक संशोधन 1998 ने भारत में मतदाता की पात्रता उम्र कम कर दी गई। भारत में 50% से अधिक आबादी 35 साल के उम्र के नीचे की है और इसका एक बड़ा हिस्सा 18 साल का पड़ाव पार कर रहा है। उन्हें जागरूक करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं। चुनाव, क्योंकि लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त और सफलता की कसौटी भी है, अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसके प्रति सावधान रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यह सोचकर चुनावों के समय मत प्रयोग नहीं भी करते कि हमारे एक मत के न डालने से क्या बनने बिगड़ने वाला है, पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। कई बार हार जीत का निर्णय केवल एक ही वोट पर निर्भर हुआ करता है।
हमारे एक वोट के न डालने से अच्छा उम्मीदवार हार और अयाचित उम्मीदवार जीत सकता है। मान लो हमारी तरह यदि अन्य कई लोग भी वोट न डालने की मानसिकता बनाकर बैठ जाएं, तब चुनाव क्या एक खिलवाड़ बनकर नहीं रह जाएगा? सजग, सावधान और जागरूक मतदाता ही चुनावों को सार्थक बनाने की भूमिका निभा सकता है। अतः

0: अपने मत का प्रयोग अवश्य परंतु सोच समझकर करना चाहिए, यही इसका सदुपयोग, सार्थकता और हमारी जागरूकता का परिचायक भी है। भारत में हर नागरिक को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि जो ताकत जनता के पास होती है वह ताकत सरकार के पास भी नहीं होती है। इसीलिए आम नागरिक को यह अंदाजा होना चाहिए कि मतदान कितना जरूरी है। गांव हो या शहर हो, हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। अपने मतदान के लिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी प्रगति में रुकावट आती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमारे देश की जितनी भी परेशानियां और समस्याएं हैं, अगर सरकार चाहे तो उन समस्याओं को खत्म कर सकती है, परंतु अकेले सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा। इसमें आम जनता को पूर्ण सहयोग करना होगा, तभी हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, इन सब को हम रोक पाएंगे, क्योंकि वोट देने से देश में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं। इसीलिए आपको अपना अधिकार समझना चाहिए और अपने देश के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हमें वोट दे के अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार दिया गया है। तभी कहा गया है कि जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की रीढ़ है। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता लोकतंत्र की रीढ़ है जागरूक मतदाता। वार्ताकार थी दीप्ति सभनानी। अब करते हैं बात ज्ञान विज्ञान की, जिसमें हम करेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पर। जी हाँ बहनों, नाविक विश्व व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं, जो पूरी दुनिया में मालवाहक जहाज़ों, कंटेनरों और टैंकरों के माध्यम से ईंधन, भोजन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। समुद्री परिवहन के जरिए वैश्विक व्यापार का लगभग 80% से 90% हिस्सा संचालित होता है, जिसमें नाविक अपने घरों से दूर रहकर हफ्तों और महीनों तक समुद्र में काम करते हैं, ताकि दुनिया और लोगों तक ज़रूरी सामान पहुंच सके। और फिर बहनों, अभी बीते कुछ समय में अमेरिका ईरान विवाद के चलते ना सिर्फ हमारे देश बल्कि ज़्यादातर देशों की क्रूड ऑयल की ज़रूरतों को प्रभावित किया। ऐसे में समुद्री जलमार्ग के नायक कहलाने वाले हमारे नाविकों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए समुद्री मालवाहकों को लाने ले जाने की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के नाविकों के अमूल्य योगदान और बलिदानों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है उसका अपना परिवार। परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना गया है। एक अच्छा परिवार समाज के लिए वरदान और एक बुरा परिवार समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। परिवार ही सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, क्योंकि बहनों, हमारे सभी रिश्ते नाते संबंधों की मर्यादा में बंधे होते हैं। एक अच्छे परिवार में अनुशासन और आज़ादी दोनों होती है। बच्चे अपने माता पिता, घर के सदस्यों और बड़े बुजुर्गों को देखकर सीखते हैं। हालांकि पहले व्यक्ति का उद्देश्य हुआ करता था परिवार का सुख, लेकिन आज हर व्यक्ति अपने स्वयं के हित को पहले सोचता है। आधुनिकता, नगरीकरण, रोजगार हेतु पलायन, महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थवाद, घमंड और विचारों में असमानता जैसे कई कारणों से संयुक्त परिवार टूटने लगे, जिस वजह से भावनात्मक जुड़ाव में भी कमी आई। बहनों, ये समझने वाली बात है कि परिवार केवल खुशी के समय ही साथ नहीं निभाता, बल्कि मुश्किल वक्त में भी इंसान को सहारा देता है। परिवार में रहकर इंसान रिश्तों को समझता है, निभाता है, और यही समझ समाज में सहयोग और मानवता जैसे मूल्यों को अपने

बनाने की प्रेरणा देती है। परिवार ही समाज के नियम, तौर तरीके, परंपराएं, संस्कृति और आचार विचार सिखाता है, जो आगे चलकर सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। बहनों, आज यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम परिवार को एक मजबूत, सकारात्मक और नैतिक वातावरण प्रदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके।

बहनों, अब है बारी कार्यक्रम के सेगमेंट होम डेकोर की। हर रसोई कुछ कहती है, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं बल्कि हकीकत है। रसोई महज खाना बनाने की जगह नहीं होती,

0: बल्कि यह हमारे घर का दिल होती है। भोजन की महक, बर्तनों की खनक, माँ के हाथों का स्वाद रसोई को घर का दिल बनाता है। त्योहारों पर पकने वाले पकवान हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों और उत्सवों की कहानी कहते हैं। पारंपरिक व्यंजनों की यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी रसोई से ही तो आगे बढ़ती है। एक गृहिणी और महिलाओं का अधिकार अधिकतर समय रसोई में ही बीतता है। बहनों, रसोई घर को सजाना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी एक कला है। रसोई घर अगर कम जगह में बना हो तो ऊर्ध्वाधर स्थान यानी फर्श से लेकर छत तक फैली हुई अलमारियों की एक दीवार पर्याप्त स्टोरेज प्रदान कर सकती है। वैसे एक बेहतरीन और उपयोगी रसोई बनाने के लिए सही लेआउट, वाटरप्रूफ सामग्री का चयन और वर्किंग ट्रायंगल यानी कि सिंक, फ्रिज और स्टोव के बीच की दूरी का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा किचन में ट्रेंडी टाइल्स का इस्तेमाल करें जिन्हें साफ करना आसान हो। रसोई की दीवारों पर हल्के रंग का पेंट करवाएं। ऐसा करने से बहनों रसोई बड़ी और हवादार दिखती है। किचन में सूटेबल कॉर्नर्स देखकर या फिर खिड़की पर छोटे छोटे प्लांटर्स भी लगाए जा सकते हैं। दाल, मसाले और अन्य ग्रोसरी के लिए पारदर्शी जार का यूज करें। दीवारों पर छोटी छोटी चीजों के लिए हैंगिंग हुक्स लगवाएं। प्राकृतिक रोशनी के अलावा काउंटर टॉप के नीचे LED स्ट्रिप्स लाइट भी लगवाई जा सकती हैं। बहनों, उत्तम सजावट और उचित साफ सफाई व्यवस्था के समायोजन की झलक हमारी रसोई में दिखेगी तो हमारी रसोई भी कुछ ना कुछ कहेगी। बहनों, आज निर्जला एकादशी की पवित्र तिथि है तो हमने इसी विषय पर की बातचीत आचार्य संतोष जी से, जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम के माध्यम से। आचार्य संतोष जी, हमारे कार्यक्रम घर संसार में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है और आज निर्जला एकादशी का पावन अवसर भी है, तो हम आपसे निर्जला एकादशी के महात्म्य को जानना चाहेंगे।
1: तो जो निर्जला एकादशी है ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि सबसे पहले इस निर्जला एकादशी के व्रत को भीम जी ने किया था, जो पांडवों के युधिष्ठिर जी महाराज के छोटे भाई हैं भीम, उन्होंने इस एकादशी के व्रत को किया था। भीमसेन वेद व्यास जी महाराज के पास में पहुंचे और व्यास जी महाराज से जाकर के कहा, बोले प्रभु मेरे परिवार वाले मुझे एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन मेरे अंदर एकादशी व्रत करने की क्षमता नहीं है क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता, तो प्रभु कृपा करके मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिस व्रत के करने से पूरी साल यानी 24 एकादशी व्रत करने का फल एक ही एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाए। तो उस समय व्यास जी महाराज ने महाराज भीम के ऊपर बड़ी कृपा की और भीमसेन से कहा कि आपने जो पूछा बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, वो आपके ही हित के लिए नहीं है, वो आगे आने वाले कलयुग में जितने भी प्राणी होंगे वो सबके हित के लिए होगा। इसका व्रत करने से 24 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और इस व्रत के करने से अपना ही कल्याण नहीं होता है, इस व्रत के करने से हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी उद्धार होता है।
0: निर्जला एकादशी की पूजा विधि और व्रत के नियम क्या हैं?
1: जिस दिन एकादशी हो उससे एक दिन पहले ही संध्या काल के समय हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अविद्या जितने भी विकार हैं इन विकारों का त्याग करना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और सुबह जग करके पहले स्नान करना चाहिए, हो सके तो दांतों करनी चाहिए और हो सके तो किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। अगर जलाशय न हो तो जिस बर्तन में आप स्नान कर रहे हैं उस बर्तन में गंगा जल डाल करके वो गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है, उस जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। और इसमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, एक दिन पहले द्वादशी वाले दिन ही करना चाहिए।
2: आज निर्जला एकादशी के विषय में जो भी जानकारी आपने हमें प्रदान की है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहनों, समय की धारा में बहते हुए अब करते हैं कार्यक्रम घर संसार का समापन। हमारी सभी श्रोता बहनों को उनकी रेडियो हम सफर मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आप प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनिए आशा भोसले की आवाज में गीत।
1: Thank you.

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना जिसे लिखा था गुलजार ने। आप सुनिए अगली पेशकश, बोल है गुलजार की, आवाज है आशा भोसले की। गीत के बोल है मांझी रे मांझी।

मांझी रे मांझी। गुलजार का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है,

दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
4: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
1: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए

0: महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
1: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
2: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
1: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
3: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभ

प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन

0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे थे दोपहर समाचार, हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए शुभ्रा तलेगांवकर का गायन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शुभ्रा तलेगांवकर का गायन। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

नौशाद के लिखे हुए गीत को अभी आपने सुना, फिल्म बैजू बावरा से। संगीतकार थे नौशाद, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। अगला गीत सुनिए मुकेश के स्वर में, फिल्म यहूदी से। संगीत है शंकर जयकिशन का और इसे लिखा है शैलेंद्र ने।

मुकेश के स्वर में आपने सुना फिल्म यहूदी का ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे शैलेंद्र और शंकर जयकिशन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आज आपने सुने बादल, बाजी, बैजू बावरा और यहूदी फिल्मों के गीत। 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

0: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनिए शंकर महादेवन, सोम्या राव और लॉय मैंडोनिस्का के स्वर में। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय। ये गीत हमने लिया है फिल्म बंटी और बबली से।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: आप सुन रहे थे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। मीडियम में 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर शायद कोई विधा प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, इससे बेहतर शायद कुछ भी नहीं। योग की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजन जब होते हैं और पूरी दुनिया एक परिवार बनकर जब 21 जून को दिखाई देती है, तब हमें योग की महत्ता नज़र आती है। आज हम योग के एक ऐसे आयाम की चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। वृद्धावस्था हमारा सुखद हो, हेल्दी एजिंग, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य और प्राकृतिक चिकित्सा विद हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्ते। हाँ
0: डॉक्टर साहब, हेल्दी एजिंग की चर्चा हर ओर आजकल सुनने देखने को मिलती है। मैं अपने श्रोताओं के लिए यही सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हेल्दी एजिंग के मायने हैं क्या?
1: सिंह साहब, जैसा आपने पूछा कि हेल्दी एजिंग अर्थ क्या, तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है कि जैसे जैसे व्यक्ति वरिष्ठ होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ उसके शरीर पे, उसके मन पे और उनके भावों पे परिवर्तन नजर आते हैं। और वो परिवर्तन सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः परिवर्तन नकारात्मक देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाज में जो चल रहा है उन सब जो परिणाम है वो ये होता है कि व्यक्ति नकारात्मक परिवर्तनों में पीड़ित रहता है, और वो नकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जकड़ लेते हैं। तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, और योग का उसमें क्या रोल हो सकता है।
0: अब चूंकि उम्र ऐसी चीज है जिसको बढ़ती उम्र को रोक पाना तो संभव है नहीं, लेकिन वो स्वस्थ हो, गरिमामय हो, सक्रिय रहे, वो हम जरूर ऐसे उपाय कर सकते हैं। जब बड़े बुजुर्गों की या वरिष्ठ नागरिकों की बात आती है, तो आज के समय में अगर हम देखें तो उनके लिए योग की आवश्यकता को ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे व्यक्तित्व है, मानव व्यक्तित्व, वो भाव प्रधान है। जिस तरह का भाव शरीर में रहता है, मन में रहता है, चित्त में रहता है, व्यक्ति उसी तरह के परिवर्तन प्राप्त कर लेता है, अडप्ट कर लेता है। और भाव को परिवर्तित करने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है दुनिया
0: बिल्कुल
1: में,
0: ठीक बात।
1: और भाव को परिवर्तन करने में योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाव प्रधान होता है और भाव प्रधानता को योग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। और न सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है बल्कि सकारात्मक परिवर्तन भाव के रूप में योग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ
0: अगर शारीरिक रूप से देखें और मानसिक रूप से भी देखें, इमोशनली भी आदमी अपने आप को बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। शारीरिक तौर पे अगर देखें तो जोड़ों में, मांसपेशियों में शिथिलता आती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो अगर मैं इस पक्ष की बात करूं जहां जोड़ों में, मांसपेशियों में, इन सब में शारीरिक तौर पे योग जो है वो किस तरह मदद करता है?
1: देखिए, आज आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। कोई शरीर की बीमारी है, और शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, मसल्स की बीमारियां हैं, हड्डियों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कान की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, मूत्र संबंधित बीमारियां, तो बहुत प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है व्यक्ति। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद सामान्य रूप से व्यक्ति के ज्वाइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज बढ़ने लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर योग अभ्यास आरंभ कर दिया जाए तो ये जो एजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं हम, कि वरिष्ठता प्राप्त करते हुए व्यक्ति विभिन्न बीमारियों का शिकार बनता है, उस परिस्थिति से हम अपने को निकाल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें जरूरत होती है हमारी मसल्स की स्टिफनेस को दूर करने की, हमारे ज्वाइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाए रखने की, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, मसल्स को मजबूत रखने की। तो ऐसी स्थिति में आसनों का जो अभ्यास है वो हमें बहुत मदद करता है। अगर आसनों का अभ्यास हम करें तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली,
0: जी,
1: इनको हम दूर कर सकते हैं।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे गठिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब समस्याएं बुढ़ापे में आम तौर पर सभी को फेस करनी पड़ती हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बढ़ती उम्र में आती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने कहा कि योग उसमें मदद करता है, तो कौन कौन से वो आसन हैं? क्या सारे आसन बुढ़ापे में किए जा सकते हैं? नहीं, तो कौन से आसन हैं जो उनको मददगार हो सकते हैं?
1: हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी कि कौन से आसन करें, क्योंकि हजारों प्रकार के आसन हैं और हजारों प्रकार के आसनों में कुछ

0: साथियों, योग का हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व है। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए योग बेहद आवश्यक है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसमें सुनिए भेंट वार्ता। विषय है स्वस्थ दीर्घायु के लिए योग। इस विषय पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा से बात कर रहे हैं अनिंद्र सिंह जी।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार, आज फिर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर। ऐसा कहा जाता है कि तन सुखी तो मन सुखी, या कहें कि मन सुखी तो तन सुखी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। यहाँ तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये भी कहा जाता है। और

0: एक आसन को चूज करना और परिस्थिति, व्यक्ति, उम्र, उसकी कैपेसिटीज हैं, उनकी जो क्षमता है उनको ध्यान में रखते हुए उन आसनों का अभ्यास करना, उसके लिए पर्टिकुलर आसन चूज करना। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर व्यक्ति 40 साल क्रॉस कर रहा है और उसको थोड़ी सी समस्याएं अब होने आरंभ हो गई हैं, तो स्ट्रेचिंग, जैसे ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, नटराज आसन है, त्रिकोणासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, उष्ट्रासन है, ऐसे आसन जिसमें खिंचाव हो और खिंचाव के साथ ज्वाइंट्स की मोबिलिटी को जो इम्प्रूव कर सके, ऐसे आसनों का अभ्यास बहुत फायदेमंद रहता है।
1: माने आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज थोड़ी हो जाए, उनमें मूवमेंट आ जाए,
0: यस, उनमें
1: वो
0: मूवमेंट आ
1: ऐसे
0: जाए
1: आपको व्यायाम या आसन,
0: करने से।
1: सूक्ष्म व्यायाम की बड़ी बात होती है, तो वो भी आप इन्हीं को ही कहेंगे सूक्ष्म
0: नहीं,
1: व्यायाम से क्या
0: सूक्ष्म
1: तात्पर्य
0: व्यायाम
1: है?
0: का अर्थ है कि हम अपने जॉइंट्स में, जो छोटे छोटे जितने हमारे जॉइंट्स हैं,
1: जी
0: हमारी फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बोज में, शोल्डर में, वेस्ट में, घुटने में, टखने में, ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को रोटेशन देते हुए रोटेट करना है, फिर थोड़ा सा बेंडिंग देना है, इनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग देना है, इसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, कि जिससे हर छोटे बड़े जॉइंट्स को, मसल्स को प्रैक्टिस मिल जाए, जिससे उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए और उन
1: स्टिफनेस खत्म हो जाए।
0: स्टिफनेस खत्म हो जाए।
1: ठीक बात, ये तो फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो हो गया। हम अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य पे। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी योग की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो जैसे जैसे आदमी उम्रदराज होता है, उम्र बढ़ती है, उसमें चिंताएं और अकेलापन और जो भावनात्मक असुरक्षा जैसी स्थितियां हैं वो घर कर जाती हैं। तो उस स्थिति में, उस संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में योग की क्या भूमिका आप देखते हैं?
0: ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सर पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, 40 साल के बाद आप देखेंगे तो बच्चों, जनरली व्यक्ति जब 40 क्रॉस करता है तो उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे होते हैं, और उसको घर बनाना होता है, उसको बाकी परिवार करना होता है सेट। ऐसी स्थिति में बहुत प्रकार की चिंताओं के थ्रू वो व्यक्ति गुजरता है, और चिंताओं से गुजरते गुजरते, जैसा आप जानते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत जब चिंता व्यक्ति करता है, तो चिंता जब बहुत ज्यादा होगी तो हमारे शरीर में हार्मोन्स के सीक्रेशंस उसी तरह के होंगे, और वो जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं वो पैदा होंगे, और वो जब पैदा होंगे तो विभिन्न प्रकार की एंजाइटी, जिसको चिंताएं, फिक्र, तनाव कहते हैं, मानसिक एक उद्वेग कहते हैं, वो हो जाएगा, आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा, इवन आगे चल के सिजोफ्रेनिक भी हो जाता है। तो जब ये चिंताएं, फिक्र होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिक कंडीशंस का शिकार व्यक्ति होता है, तो उसको योग का अभ्यास आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दवाई इसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो सकती जब तक खुद के, क्योंकि हम ये मानते हैं, योग में ये मानते हैं कि ये जो परेशानी है ना, वो शरीर के अंदर से पैदा हुई हुई है, तो शरीर के अंदर ही अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मुद्रा और बंधनों के द्वारा, तो बाहर से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
1: कांटे से ही कांटा
0: कांटे
1: निकलेगा।
0: से ही कांटा निकलेगा। जो चिंता फिक्र हुई वो शरीर के अंदर ही हुई ना, और अंदर ही उसने रोग पैदा कर दिए, तो इसको हम अपने अंदर ही परिवर्तन ला करके,
1: उसका
0: अपने
1: हल भी आपको अंदर ही तलाशना
0: अंदर
1: है।
0: ही तलाश रहे हैं। हम हर जनरली बाहर तलाशते हैं, और बाहर तलाशने के चक्कर में जिंदगी भर दवाई खाने के शिकार हो जाते हैं, और जिंदगी भर दवाई खाते हैं, और तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी जो ठीक होता नहीं, नई प्रकार की बीमारियों को शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में ध्यान का अभ्यास, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी का अभ्यास और ओम का अभ्यास व्यक्ति करे, तो उसको विभिन्न प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सकती है।
1: ध्यान, प्राणायाम और आपने जैसे कहा कि ओम का अभ्यास, तनाव कम हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक जो मुझे लगता है कि आदमी अगर सकारात्मक रहे तो सकारात्मक सोच विकसित करने में भी शायद योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: निश्चित रूप से। देखिए सर, योग अभ्यास जब हम करते हैं तो योग का अभ्यास का मतलब यह है कि सिर्फ आसन नहीं, उसमें आसन के साथ प्राणायाम होता है, धारणा होता है, ध्यान होता है, मुद्रा होता है, बंध होता है, और ये कलेक्टिवली जब हम इन सब चीजों का अभ्यास करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि हमारे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को दुरुस्त रखना, सामाजिकता दुरुस्त रखना, और भाव प्रधान और सकारात्मक भाव रखना, ये चारों स्तर पर हमारा ये आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और ध्यान काम करता है, और जब शरीर के चारों स्तरों पर समन्वय पैदा हो जाता है, ट्रैंक्विलिटी पैदा हो जाती है, तो किसी भी प्रकार के रोग को ये प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ये क्योर भी कर सकते हैं, इसलिए कलेक्टिवली सबका अभ्यास करना चाहिए।
1: ठीक बात, बुढ़ापे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि याददाश्त चली जाती है
0: बिल्कुल,
1: और जो मानसिक एक शिथिलता आ जाती है, तो क्या योग हमारी स्मरण शक्ति को या मानसिक सक्रियता को बढ़ाने में मददगार होता है?

0: देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली 50, 55, 60 के बाद, 60 के बाद लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, स्मरण शक्ति उसकी बहुत कमजोर हो जाती है। और अक्सर ये वृद्ध लोग ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं, अरे कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहा, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, मैंने चाबी कहाँ रख दी, मैंने पैसा कहाँ रख दिया, मैंने बाकी चीजें कहाँ रख दी, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि उस वक्त एक तो हम मानसिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, लगभग हमें हमें लगता है कि अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम अपने को उदासीन पाते हैं। तो हम छोटी छोटी जो समस्याएं या छोटी छोटी जो और चीजें पहेलियां हैं उनको सुलझाने में कोई किसी प्रकार का एंटिसिपेशन नहीं करते, किसी प्रकार का भाग नहीं लेते। इससे हमारा ब्रेन काम करना धीमे धीमे धीमे धीमे कम कर देता है। और ये ब्रेन की नेचर है कि अगर आपने ब्रेन से काम लेना बंद कर दिया तो ब्रेन काम नहीं करेगा,
1: शिथिल हो जाएगा।
0: शिथिल हो जाएगा। दूसरा, हम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जैसे अभ्यास नहीं करते, जिससे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और ब्रेन में जो स्पेशली ब्लड की और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मात्रा से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम योग का अभ्यास करें तो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में ज्यादा होगी। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में ज्यादा है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है,
1: तो वो
0: तो
1: सक्रिय रहेगा।
0: डिमेंशिया जो स्मरण शक्ति है उसको बना के रखती है। अगर कम भी हो गई है तो उसको पुनः से प्राप्त किया जा सकता है।
1: अच्छा, एक चीज जो हम जो फिजिकल उसकी बात कर रहे थे कि जोड़ों में मांसपेशियों में मजबूती के लिए योग किस तरह मददगार होता है।
0: देखिए, 40 साल के बाद हार्मोन सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं, नौ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। और जब सीक्रेशंस कम होते हैं, हमारी बॉडी को जिस तरह के, जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी के हार्मोन्स चाहिए, 40 साल के बाद सामान्य रूप से उन उन बॉडीज को उस तरह के हार्मोन्स नहीं मिल पाते जो कि सामान्य व्यक्ति योगाभ्यास या फिजिकल मूवमेंट नहीं करता। ऐसी स्थिति में जब हार्मोन्स के सीक्रेशंस कम हो गए हैं तो सबसे पहले असर पड़ेगा मसल्स पे, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, मसल्स स्टिफ हो जाएंगे। और जब मसल्स स्टिफ होंगे तो इसका असर जाएगा आपके लिगामेंट पे, लिगामेंट के बाद असर जाएगा बोन पे, और लिगामेंट्स, बोन, मसल्स जब सब स्टिफ होंगे तो फिर पेन की स्थिति बन जाएगी।
1: सारे के सारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो आपस में एक समन्वय में कार्य करते
0: समन्वय
1: हैं,
0: में कार्य
1: और
0: करते
1: जब
0: हैं।
1: वो समन्वय कहीं गड़बड़ाता है तो सारे अंग प्रत्यंग जो है वो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा पाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं, और
0: बिल्कुल
1: उसकी परिणति होती है कि हमें बहुत सारे जो रोग हैं वो नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द।
0: बिल्कुल
1: हम अपने श्रोताओं के साथ आपकी पसंद का एक गीत इस मुकाम पे सुनवाने का चेष्टा करेंगे, तो हमें बताएं कि आप की पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को अभी सुनवाना चाहें।
0: मुझे वो पुराना गाना इनसे बड़ा अच्छा लगता है, कोई यूं ही मिल गया था सरे राह चलते चलते।
1: ओ हो, क्या बात है, क्या बात, कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते।
0: हाँ, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: जी
0: अगर आप श्रोताओं को ये गाना सुनवाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और मुझे लगता है ये इसमें जो संगीत है ना सिंह साहब,
1: जी
0: वो भाव विहोर कर देने वाला है।
1: तो
0: ये वो
1: आइए सुन
0: संगीत है जो
1: लेते हैं
0: हमारे,
1: आपकी पसंद का ये
0: बिल्कुल
1: गीत।

0: डॉक्टर साहब, फिर से वापस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल का युग डिजिटल युग है, जहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बूढ़े हैं घर के, वो भी मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो क्या योग जो है आज के डिजिटल दौर में, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी इसमें संतुलन स्थापित करने में मददगार होता है?
1: बिल्कुल सिंह साहब, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। डिजिटल जो एडिक्शन जिसको कहते हैं,
0: जी
1: मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इसका उसका। और बड़े ही नहीं, इसमें सो 5 साल 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग सब लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया है।
0: नहीं,
1: और
0: युवा पीढ़ी और बच्चे तो हैं ही इसमें,
1: हाँ
0: लेकिन आजकल तो जो है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि समय की उस साथ चलना उनकी मजबूरी है। और जो आजकल की तकनीकी युक्त जो हमारा जीवन हो गया, जीवन शैली है, जिसमें तकनीक का बड़ा दखल है, तो ऐसे में उसको अवॉइड कर पाना तो बहुत मुश्किल है। जी
1: अवॉइड कर पाना मुश्किल है सिंह साहब, लेकिन इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और समाधान इसका यह है कि हम व्यक्ति को दूसरे टारगेट्स उपलब्ध कराएं, दूसरे उद्देश्य उपलब्ध कराएं। अभी व्यक्ति के पास क्या है, जब वो खाली बैठता है तो उनको लगता है मोबाइल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, इंस्टा खोल दो, फेसबुक खोल दो और उसे टाइम पास हो जाएगा, व्हाट्सएप से टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको समझाएं और बताएं व्यक्ति क्यों ये डिजिटल

0: एडिक्शन क्यों हो गया है, व्यक्ति के अंदर कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर खोजता है वो। उसको लगता है व्हाट्सएप पे कुछ मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, कुछ नया मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, उसको ऐसा लगता है।
1: जी
0: और ऐसा खोजते खोजते वो पूरे जिंदगी भर, पूरी वो साल, पूरे महीने, पूरे वीक, पूरे 24 घंटे वो बिजी रहता है इंस्टा फेसबुक पे। हाँ, मिलता कुछ नहीं है। अगर हम उसकी विवेक को जागृत कर पाए कि इंस्टा पे नहीं है, आपको जितने उत्तर हैं प्रश्नों के वो आपके अंदर से मिलेंगे, और आपके अंदर आपको झांकना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा,
1: और यही आपको योग जो है काम
0: और
1: आता
0: यही
1: है।
0: आपको योग काम करेगा। और एक बार जब योग क्लिक कर गया, उसको वो अपने अंदर कनेक्ट हो गया, तो वो जो आनंद आता है, जो उत्तर मिलते हैं दुनिया भर के प्रश्नों के, वो दुनिया में बाहर कहीं नहीं मिलते।
1: और आपने बीच में बात की थी कि सामाजिक जो एक कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्ट, क्या योग व्यक्ति को खास तौर से वृद्धावस्था में सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहने में मददगार होता है?
0: हाँ, निश्चित रूप से योग सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में मददगार करता है। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने आप में तो ठीक है, लेकिन उसका झगड़ा अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, बिजली के मैकेनिक के साथ होता है, सब्जी वाले के साथ होता है, दूध वाले के साथ होता है, चाय वाले के साथ होता है। यानी सामाजिक जो तारतम्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। समाज में उसकी बन नहीं रही है किसी से, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होती, समाज की अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं होती, उसकी अपेक्षाएं समाज से पूरी नहीं होती, और वहां द्वंद पैदा होता है और झगड़ा होता है समाज में और व्यक्ति में, और ऐसे में समाज भी पीड़ित है और व्यक्ति भी पीड़ित है, दोनों ही पीड़ित है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम बन सकता है, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी फिलोसफी है जो दोनों के बीच में एक तारतम्य, एक ट्रैंक्विलिटी, एक संबंध स्थापित कर सकता है, सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकता है, जो ये बताता है कि सामने वाले का दुख मेरा दुख है, सामने वाले की समस्या मेरी समस्या होनी चाहिए। वो सामने वाले को अगर समस्या से पीड़ित पाता है, तो जनरली सामान्य रूप से लोग समझते हैं हमें क्या करना है, बाहर में जाने दो, वो पीड़ित है तो पीड़ित रहने दो, वो उसको मदद नहीं करता है। जबकि हम मनुष्य के सामाजिक प्राणी है, जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो व्यक्ति का काम चलेगा नहीं। हम कितने बड़े भी सक्षम हो जाए, कितने बड़े पैसे वाला हो जाए, कितने बड़ी सुविधाएं प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आपस में हमारा तारतम्य ठीक नहीं है, मानव मानव की मदद करने को तैयार नहीं है, तो सामाजिक जो ताना बाना है वो खराब होना ही है। अगर
1: दूसरे की कठिन परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं वो एहसास, दूसरे के सुख में वो खुशी, वो आपको अगर होती हैं तो आप सामाजिक रूप से कनेक्टेड हैं।
0: बिल्कुल
1: नहीं है अगर, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर रहे हैं और आपको संतुलन का बिठाने की ज़रूरत है।
0: और सिंह साहब एक बात और जोड़ूंगा, ये जो होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को प्रभावित करता है। उसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं है, वो सिर्फ योग अभ्यास उसके लिए एक ऐसी दवाई है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। यानी आप गलत नहीं सोचेंगे, आदमी गलत सोचता है तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि खाओ और सही
1: आपके
0: सोचो।
1: भावों पे नियंत्रण जो है वो
0: भावों पर
1: तभी हो
0: नियंत्रण,
1: सकता है जब आपका अपनी श्वासों पे नियंत्रण हो।
0: हाँ, श्वासों पर नियंत्रण हो और आपके अंदर की चेतना पे आपका जब नियंत्रण हो जाएगा तो आप सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, दुनिया का दुख आपको अपना दुख लगेगा, दुनिया का
1: ठीक
0: सुख
1: बात
0: अपना
1: है।
0: सुख लगेगा, वहां आप सामाजिक ताने बाने में जुड़ जाएंगे।
1: एक चीज और होती है डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, कि जब हम मिल बैठ के सामूहिक रूप से योग के सेशंस करते हैं, तो ऐसे सत्रों में सिर्फ जो है आप कहें स्वास्थ्य लाभ हो रहा हो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सामाजिक जुड़ाव है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल ठीक बात है, एक साथ जब करते हैं तो एक साथ सबकी चेतना, सबकी ऊर्जा, सबकी शक्ति एक साथ एक जैसे काम करती है, और जब एक जैसे काम करती है तो विचार भी एक जैसे आएंगे, बॉडी के अंदर चेंजेस भी एक जैसे होंगे और वो सकारात्मक होंगे, भाईचारा बढ़ेगा,
1: बिल्कुल।
0: वैमनस्यता खत्म होगी।
1: अब हम चूंकि अब वृद्धावस्था होती है तो लिमिटेशंस हो जाती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद हम चाह के भी नहीं कर सकते, तो क्या वो सावधानियां हैं, क्या वो बातें हैं कि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति योग सत्र करता है तो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, उसको सावधानी बरतने की ज़रूरत है?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि टीवी और यूट्यूब देख के कभी योग न करें, ये सबसे खतरनाक बीमारी चल रही है आजकल। डिजिटल एडिक्शन का एक एक बड़ा कारण ये भी है कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिसकी एजुकेशन का कोई पैरामीटर वहां निर्धारित नहीं है। कोई भी आदमी अपने को कितना भी बड़ा योगी मानते हुए सो कॉल्ड योगी बन जाता है और वहां वो अपने विचार व्यक्त करने लगता है जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, अकाडमिक एजुकेशन नहीं है, और अकाडमिक एजुकेशन के बगैर जो लोग सिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। इसलिए यूट्यूब देख करके, इंस्टा देख करके कभी भी योगाभ्यास नहीं करना
1: सोशल
0: चाहिए।
1: मीडिया पे दूसरों

0: को देख के आप अपनी क्षमताओं का आकलन, गलत आकलन ना करें।
1: यस करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा अपना आकलन न करें, आप किसी एक्सपर्ट, किसी योग गुरु के पास जाएं, उससे व्यक्तिगत रूप से मिलें, अपनी परेशानियां, अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं बताएं और उसके अनुसार वो आपको, आपके लिए एक प्लान देगा कि
0: वो
1: आपको
0: उसको
1: ये
0: आप
1: अभ्यास।
0: अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं साझा करें और वो आपकी क्षमताएं, आपकी सीमाएं जो है वो देख के निर्धारित करके आपको उसके हिसाब से सलाह, सही सलाह देगा।
1: निश्चित रूप से बिल्कुल।
0: अब मान लीजिए कोई वरिष्ठ व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा समय योग के लिए दे पाने के लिए नहीं है, और अगर मान लीजिए कि वो आधा घंटे, 45-50 मिनट ही अगर वो देना चाहता है, तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो दिनचर्या है उसकी जिसमें योग जैसी विधा को शामिल कर सकता है और अपनी जो एजिंग प्रोसेस है उसको और हेल्दी कर सकता है।
1: हाँ, अगर व्यक्ति के पास, मैं कह रहा हूं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं है तो कोई बात नहीं, 30 मिनट है, 40 मिनट है, 30 से 40 मिनट का शेड्यूल योगाभ्यास अगर करे वो, तो उसको पूरा हेल्दी एजिंग में बहुत मदद कर सकता है। और उसमें सुबह उठे, अपना थोड़ा बहुत नींबू पानी पिए और सुबह जो है जग करके बैठ जाए, थोड़ी कपालभाति करे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, भ्रामरी करे, ओम गाए और फिर खड़े होकर के सूक्ष्म व्यायाम कर ले, जिसमें रोटेशन है, कंधे का, गर्दन का, कमर का, घुटने का, एंगल्स का रोटेशन कर ले, थोड़ा हाथ चौड़े करके ट्विस्टिंग कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले और फिर लेट करके क्रोकोडाइल्स कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, सेतुबंधासन कर ले, अर्धहलासन कर ले, फिर उल्टा लेट करके निरालंबासन, भुजंगासन, सर्पासन कर ले और बैठ करके वक्रासन और पश्चिमोत्तान कर ले, खड़े होकर के ताड़ासन, वृक्षासन और चक्रासन कर ले और ओम गा ले, थोड़ा शवासन का अभ्यास कर ले। ये पूरा शेड्यूल कुल मिलाकर के आधा घंटे से लेकर के 40 मिनट में हो जाता है। और अगर ये होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये लगभग 20 आसनों के नाम मैंने बताए हैं, 4 प्राणायाम के नाम बताए हैं और कपालभाति बताई है और 1 शवासन का अभ्यास बताया है। ये लगभग 25 प्रक्रियाएं हैं। अगर इन 25 प्रक्रियाओं का अभ्यास व्यक्ति 30 से 40 मिनट रोज करता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसको जीवन में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी, शरीर और मन उसका स्वस्थ रहेगा। और हमारा इस साल का जो योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम है,
0: जी,
1: उस थीम को भी हम पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे।
0: उम्र बढ़ना तो जीवन की एक स्वाभाविक
1: स्वाभाविक
0: प्रक्रिया
1: प्रक्रिया
0: है,
1: है बिल्कुल।
0: लेकिन सक्रिय रहना वो आपका अपना निर्णय है, किस तरह से आप अपने दिनचर्या में नियमित योग और इनका पुट सम्मिलित करके अपने जीवन को स्वस्थ और आनंदमय बना सकते हैं। योग केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं मेंटेन करता, वो आपके जीवन में भी एक संतुलन कायम करता है। जाते जाते हमारे श्रोताओं को स्वस्थ और खुशहाल वृद्धावस्था के लिए कुछ और संदेश देना चाहें।
1: मैं सब श्रोताओं को जो सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने का बहुत साधारण तरीका है, ज़्यादा आपको विज्ञान में फंसने की आवश्यकता नहीं है। टाइम से सो जाइए, टाइम से जग जाइए, टाइम से खा लीजिए और आधा घंटे से 40 मिनट का योग अभ्यास कर लीजिए, बस आप स्वस्थ हो जाएंगे।
0: नियमित योग, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच, और साथ साथ जो सामूहिक योग करेंगे तो सामाजिक जुड़ाव, ये
1: बिल्कुल
0: आपको बेहतर वृद्धावस्था की ओर लेके जाएंगे। तो
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, आज जो इनसाइट्स हमें डॉक्टर साहब ने दी हैं वो हमारे ज़रूर काम आने वाली हैं। डॉक्टर शर्मा साहब, आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: स्वस्थ दीर्घायु के लिए योग, इस विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा से अनिंद्र सिंह जी की बातचीत। ये भेंटवार्ता आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन स्टैब्लिश किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंगस्ट 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा,
0: मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कंप्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा है, देन आई वॉज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक अकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो अकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस
1: वो वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते।
0: अच्छा।
1: रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीजों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहां, जहां से 5-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट इन योर।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं। तो एवरीथिंग इज व्हाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग व्हाइट क्लोथ, योर इग्लू इज व्हाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे

0: सबके आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेशन, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है. तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं. ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का.
1: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया. तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर. आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं. हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085.

0: 101.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: सो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वॉज अ गुडविल विच वॉज स्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में, और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस अच्छा। जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, तो यहां पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
0: पूरा लाइफ स्टाइल।
1: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होकर आए होते हैं, फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर, मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे, एंड आई हैड टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
0: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है।

0: जी
1: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे थे, स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी, तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देकर आ गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बनकर पेड़ बन रहा है, वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में पांच टीचर्स लिए आते हैं, पांच टीचर्स और करीब छह सात का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज पर 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम कराना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना, कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती से रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां आ गया कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए,
0: हमेशा
1: वो बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे।
0: जी जी,
1: तो ये
0: जी,
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे, जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको बीएसएम से सम्मानित किया गया
0: जी,
1: तो वो जो मोमेंट था?
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट के तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
0: जी,
1: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल जी। सर एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वीं में हैं
1: जी,
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
1: ओके।
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा,
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई करें, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं।
1: ओके।
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं।

0: पे ये रूल्स समय समय पे चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है। पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं, जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल जाता है।
1: यानी कि बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफ स्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या जो पास आउट हो चुके हैं
1: हाँ,
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी, और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

आजा जिंदे शामी आने के तन।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स भी पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माई हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टूडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स द कंट्री। आई बो माई हेड टू देम माई सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोड फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011-2342-1085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं।
0: okay.
1: तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे यहाँ 2 colleges हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से, एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है।
0: ओके।
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
0: ओके।
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया।
0: जी, तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है और

0: और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है,
1: अच्छा,
0: सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो
1: ओके,
0: अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं,
1: सर
0: जहां
1: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या
0: जी
1: आम
0: जी जी
1: आम भाषा के हिसाब से,
0: जी
1: तो उसको कैसे हम इसको
0: जी
1: समझेंगे कि ये कौन कौन से, आप जो जो ये बता रहे हैं आप इन?
0: संस्थान में जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है, कि
1: अच्छा,
0: जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि
1: ओके,
0: आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई,
1: अच्छा, मतलब जो
0: ट्रीटमेंट्स हो
1: बहुत
0: गए,
1: ही सेंसिटिव या बहुत ही
0: यस
1: गंभीर वाले,
0: जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो
1: अच्छा,
0: इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे
1: अच्छा
0: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
1: जी,
0: एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ, तो प्लस यहां पे ये है कि भाई जो जो बच्चे यहां पे पढ़ने आएंगे,
1: जी,
0: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज यहां पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
0: जी
1: बातचीत करते
0: जी
1: हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे,
0: जी
1: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना,
0: जी
1: इतने हाईली सेंसिटिव
0: जी
1: जो
0: जी
1: ट्रीटमेंट्स आपने बताए
0: जी
1: उनको और बेहतर से
0: देखिए सर,
1: बेहतर बनाना।
0: दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वॉज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माई ओन डिस्पोजल।
1: जी,
0: यहां पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, केपेबिलिटीज और अलग अलग
1: अपने अपने
0: इन्वायरमेंट से
1: काम
0: आती है,
1: कर रही है।
0: तो यहां पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो
1: जी
0: अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहां पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे, जंगल में एक तरीके
1: अच्छा
0: से, जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहां पे जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द
1: जी
0: फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, कि मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं,
1: जी
0: बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू,
1: एग्जैक्टली,
0: तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो
1: बिल्कुल,
0: लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो
0: जी
1: जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
0: फिर
1: हैं।
0: आगे बढ़ते हैं,
1: सर,
0: बिल्कुल
1: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
1: ओके,
0: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
1: ठीक,
0: डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी
1: बिल्कुल,
0: करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर
1: जी
0: उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया, तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये
1: तो
0: अपने
1: ये
0: आप में
1: बहुत बड़ा अपने
0: जी
1: आप में
0: जी
1: अचीवमेंट
0: जी
1: था,
0: जी
1: और जाहिर है ये बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें फिर किस तरीके का आपको?
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ, सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहां भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना,
0: जी,
1: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: यस, रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और

0: उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं जो इस काम को कर सकते हैं कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं जी, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, कि आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ
0: वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल अलग वे ऑफ लाइफ
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: एब्सोल्युटली।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के भी एक जज्बा पैदा हो
0: जी।
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज स्ट्रांग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहां संभव ना हो पाए, बट हां ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दुश्वार है, वो
1: एग्जैक्टली। सर एक चीज यहां भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहां आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हां सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको एनसीसी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी आपने पास कर लिया।
1: अच्छा,
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं,
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज,
0: राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट।
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश और जज्बा और देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उस पर जान निछार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे।

0: से सोल्जर में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
0: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक आप भी इंजॉय करें। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जिसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। दे विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट कैन यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हां, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है। आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में

0: एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है। तो ये किसी हद
1: तक मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि एआई का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि दे विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि एआई के माध्यम से, एआई के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं। अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, एआई पर हमने बात की और एआई तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बनी चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास फिफ्थ पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास छठे और क्लास नवे में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम एनटीए कराता है और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart myself, Shankar Lord from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
1: Bharat Mata Ki Jai.
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं। लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी।
0: तो
1: जी,
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से। तो हमारे यहां भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में, लाइफ स्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इंपैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा
1: जी। जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से
0: जी।
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके,
1: तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
0: जी।
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है बस खाली।
0: वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज शॉर्ट तो है ही, जैसे मैंने पहले बोला इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे।

0: कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है।
1: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है,
0: जी, जी,
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी है।
1: किताबें
0: देखिए साहब, आप
1: तो
0: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट यस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है। और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट,
0: यस अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीजों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीजों से। प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना समझाना सिखाना बहुत जरूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है।
1: तो क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीजें तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं,
0: जी जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली वी कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इंपैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इंपैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: तो समझ
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहां पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आने के लिए।
0: जी
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी बीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला

0: तथा श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीकचो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगमनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता, रखरखाव की समीक्षा की है। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने गुणवत्ता जवाबदेही बनाए रखते हुए परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 घायल हो गए हैं। स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, इनमें 4 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा नौवहन स्वतंत्रता विषय पर। साथी होगी वार्ता, नशा मुक्ति की पहली शर्त है आत्म संयम। वार्ताकार होंगे अनिंद्र सिंह। सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड में जानिएगा ब्लू फूड्स के बारे में। हेल्थ प्लस में लीजिएगा जानकारी मस्तिष्क पर नशे के कुप्रभाव के विषय में।

साथी जानिएगा टिप ऑफ द डे। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6 बजे, जिसमें चर्चा होगी स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता विषय पर। साथी होगी भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा कैसे करें प्रभावी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। विषय पर डॉक्टर मोहनलाल दौतानिया से होगी अनिंद्र सिंह की बातचीत। अन्य सेगमेंट होंगे नई खोज, जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल, आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी संविधान हत्या दिवस विषय पर। अन्य सेगमेंट होंगे देश दुनिया, होगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, लीजिएगा सेहत टिप्स और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा शाम 7:10, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता किशोरों में बढ़ती पलायनवादी प्रवृत्ति। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल कुमार यदुवंशी। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 8 बजे कार्यक्रम शब्द गीत में, जिसमें आप सुनेंगे एक ही शब्द पर आधारित फिल्म संगीत। इसके अलावा फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स। श्रोताओं, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका सर्जना, जिसमें वार्ता होगी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, वार्ता होगी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वार्ताकार होंगे प्रोफेसर रामवीर सिंह। इसके अलावा होगी कहानी जल देवता, कहानीकार होंगे पवित्र कुमार शर्मा। कार्यक्रम के अंत में सुनिएगा डॉक्टर त्रिमोहन शाक्य तरल से काव्य पाठ। और रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग शुद्ध कल्याण। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

रेडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम सुर संध्या का, तो आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना चार धाम फिल्म से अनुराधा बोडवाल और हरिहरन के स्वर में।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, दाता फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाडिकर की आवाजों में। अनजान की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का गीत जोधा अकबर फिल्म से A.R. रहमान के स्वर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में जोधा अकबर फिल्म से ये भक्ति रचना आपने सुनी एआर रहमान के स्वर में। बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी एआर रहमान ने। श्रोताओं, इन भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा, 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: पर तनाव बढ़ता है या जहाजों की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है तो उसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ हम पर भी पड़ता है। और यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के अवसर पर एक ऐसे विषय की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है जो दुनिया को जोड़ने का काम करता है। विषय है नौवहन स्वतंत्रता। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले मुझसे तो मिल लीजिए। युववाणी के इस खूबसूरत मंच पर मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी साथी रोशनी शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आकाशवाणी के कार्यक्रम युववाणी में। नाम रोशनी है तो कोशिश भी यही रहती है कि हर मुलाकात में जानकारी की थोड़ी सी रोशनी और सकारात्मक सोच की थोड़ी सी गर्माहट आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए बात करते हैं नौवहन स्वतंत्रता की। दोस्तों, हर साल 25 जून को यानी आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन नाविकों को समर्पित है जो समुद्र के रास्ते दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नौवहन स्वतंत्रता आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाज बिना किसी अनावश्यक रोक टोक के सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सके। दोस्तों, सुनने में ये विषय थोड़ा गंभीर लग सकता है, लेकिन इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। आपके कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, किताबें, यहाँ तक कि कई ज़रूरी दवाइयाँ भी समुद्री रास्तों से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचती हैं। अगर समुद्री मार्ग बाधित हो जाएँ तो व्यापार प्रभावित होगा, सामान महंगा भी हो सकता है और कई ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति भी रुक सकती है। यानी जब समुद्र में जहाज आसानी से चल पाते हैं तब दुनिया की अर्थव्यवस्था भी आसानी से चलती है। अब इसका महत्व तो आपको समझ आ ही रहा होगा। दोस्तों, आज के युवा के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि आज करियर के नए अवसर मर्चेंट नेवी, लॉजिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री कानून जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर हम करियर चुनते समय सिर्फ उन्हीं विकल्पों पर ध्यान देते हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के हिसाब से दुनिया में सिर्फ दो ही करियर बचे हैं, या तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ या फिर मोटिवेशनल स्पीकर। खैर, उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी सारे पेशे शायद छुट्टी पर चले गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि समुद्री क्षेत्र भी दोस्तों युवाओं के लिए कई संभावनाओं से भरा हुआ है। अब संभावनाओं के साथ चुनौतियां ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, नाविकों का जीवन भी आसान नहीं होता। महीनों तक परिवार से दूर रहना, समुद्र की बदलती परिस्थितियों का सामना करना और लगातार जिम्मेदारियों का निभाना, ये सब उनके काम का हिस्सा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हमें उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर भी देता है। दोस्तों, जब हम अपने सपनों की यात्रा पर निकलते हैं तो हमें भी एक तरह की स्वतंत्रता चाहिए होती है। सीखने की स्वतंत्रता, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता और अपने लक्ष्य चुनने की स्वतंत्रता। शायद इसी कारण नौवहन स्वतंत्रता का ये विचार केवल समुद्र तक तो सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर सफर में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इसी खूबसूरत विचार के साथ अब समय है आज के सवाल का। तो दोस्तों, आज 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस तो मनाया ही जाता है, लेकिन आज का दिन भारत के इतिहास से जुड़ी दो महत्वपूर्ण हस्तियों से भी संबंधित है। तो आज का सवाल है कि 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के अलावा और क्या मनाया जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो सोचिए, याद कीजिए और कार्यक्रम के अंत तक अपने उत्तर के साथ हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से युववाणी में। अभी तक हम बात कर रहे थे नौवहन स्वतंत्रता की, यानी ऐसे रास्तों की जो दुनिया को जोड़ते हैं और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें तो जीवन में ऐसे भी रास्ते होते हैं दोस्तों जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, और उन रास्तों पर बने रहने के लिए सबसे ज़रूरी होती है सही दिशा और आत्मसम्मान। युवा अवस्था अपने सपने

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अपने सपनों, अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल तक जो नया फ़ोन पहुंचता है, ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान घर आता है, या फिर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार कैसे होता है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने खबरों में रेड सी स्टेट ऑफ हार्मुज समुद्री सुरक्षा की चर्चा ज़रूर सुनी होगी। कभी तेल की कीमतों को लेकर चिंता होती है तो कभी किसी व्यापारिक जहाज पर हमले की खबर सामने आ जाती है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर समुद्र में होने वाली इन घटनाओं से का हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है? दरअसल दोस्तों, भारत का बहुत सारा व्यापार और तेल समुद्री रास्तों से ही आता है, इसलिए जब समुद्री मार्गों

0: सीखने की भी उम्र है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की भी। लेकिन कई बार कुछ गलत आदतें और नशे जैसी बुराइयां युवाओं को उनके लक्ष्य से भटका देती हैं। इसलिए केवल बाहरी चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से जीतना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाएगा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन और बेहतर भविष्य के लिए नशे से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। और नशे से दूर रहने की शुरुआत होती है आत्म संयम से, यानी अपने मन और अपने फैसलों पर नियंत्रण रखने से। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने हमारे साथ हैं अनिंद्र सिंह। चलिए उनसे जानते हैं नशा मुक्ति की पहली शर्त है आत्म संयम के बारे में।
1: मनुष्य का जीवन अनमोल है। यह केवल सांसों का क्रम नहीं बल्कि संभावनाओं, सपनों, रिश्तों, मूल्यों और उपलब्धियों की एक सतत यात्रा है। इस यात्रा को सफल, सार्थक और सुखद बनाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और नैतिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। किंतु जब जीवन में नशे का प्रवेश होता है तब यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, परिवार, सामाजिक संबंधों और भविष्य को भी धीरे धीरे खोखला करने लगता है। यही कारण है कि नशे को अनेक सामाजिक बुराइयों की जड़ माना गया है। नशे से मुक्ति की चर्चा जब भी होती है तो सबसे पहले जिस तत्व की आवश्यकता सामने आती है वह है आत्मसंयम। वास्तव में नशा मुक्ति की पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्थायी शर्त आत्मसंयम ही है। बाहरी उपचार, दवाइयाँ, परामर्श और सामाजिक सहयोग तब तक पूर्ण प्रभावी नहीं हो सकते जब तक व्यक्ति स्वयं अपने भीतर परिवर्तन की इच्छा और आत्मनियंत्रण की शक्ति विकसित न करे। आत्मसंयम वह आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को तात्कालिक आकर्षणों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक कल्याण का मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। यदि तनिक भी गहनता से सोचें तो समझ आता है कि नशा एक आदत भर नहीं बल्कि एक विनाशकारी प्रवृत्ति होती है। आज नशा केवल शराब, तंबाकू या मादक पदार्थों तक सीमित नहीं है, इसके रूप बदल रहे हैं और दायरा भी बढ़ रहा है। शराब, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, नशीली दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन उत्पाद और कई अन्य पदार्थ युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। नशे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी निर्भरता का शिकार बना लेता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा, मित्रों के दबाव, तनाव से राहत या फैशन के नाम पर होती है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है। इसके बाद व्यक्ति अपने विवेक, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों पर नियंत्रण खोने लगता है। नशा व्यक्ति को यह भ्रम देता है कि वो तनाव, चिंता या दुख से राहत पा रहा है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह अपनी समस्याओं को और अधिक जटिल बना रहा होता है। क्षणिक सुख का यह भ्रम अंततः जीवन भर की पीड़ा का कारण बन सकता है। आत्मसंयम के वास्तविक अर्थ को यदि समझें तो केवल इच्छाओं का दमन भर नहीं है ये। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहारों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखना। ये वो क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर कर उचित निर्णय ले सकता है। भारतीय संस्कृति में आत्मसंयम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे चरित्र निर्माण की आधारशिला बताया है। भगवत गीता में भी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण को जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। आत्मसंयम व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि वह परिस्थितियों का दास न बनकर उनका स्वामी बने। वह आकर्षणों और प्रलोभनों के सामने झुकने के बजाय अपने लक्ष्य और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बना रहे। नशा मुक्ति के संदर्भ में आत्म संयम का अर्थ है न कहने की क्षमता। जब मित्र दबाव डालें या तनाव बढ़े, जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी व्यक्ति अपने विवेक को बनाए रखे और गलत मार्ग पर जाने से स्वयं को रोक सके। किसी भी लत से बचने का सबसे सरल तरीका है उसकी शुरुआत से ही उसे न होने देना। यह कार्य आत्मसंयम के बिना संभव नहीं है। युवावस्था में जिज्ञासा स्वाभाविक होती है। अनेक बार युवा यह सोचकर नशे का प्रयोग करते हैं कि केवल एक बार करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही एक बार कई बार विनाश की शुरुआत बन जाता है। आत्मसंयम व्यक्ति को तात्कालिक आकर्षणों के बजाय दूरगामी परिणामों पर विचार करना सिखाता है। वो यह समझ पाता है कि किसी भी निर्णय का प्रभाव केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ता है। जिस युवा में आत्मविश्वास और आत्मसंयम होता है वह साथियों के दबाव में नहीं आता, वह अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करता है और सही

0: निर्णय लेने का साहस रखता है। नशा मुक्ति की प्रक्रिया में आत्मसंयम की महत्वपूर्ण भूमिका को अगर हम समझें तो जो व्यक्ति पहले से नशे की लत का शिकार हो चुका है उसके लिए नशा मुक्ति एक कठिन लेकिन संभव यात्रा है। इस यात्रा में चिकित्सा, परामर्श, परिवार का सहयोग और सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका व्यक्ति की स्वयं की इच्छा शक्ति और आत्मसंयम ही निभाते हैं। नशा छोड़ने का निर्णय बाहरी दबाव से नहीं बल्कि आंतरिक जागृति से सफल होता है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि नशा उसके जीवन, स्वास्थ्य और संबंधों को नष्ट कर रहा है, तब उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जन्म लेती है। लेकिन केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है, नशा छोड़ने के दौरान अनेक बार पुनः नशे की ओर लौटने का आकर्षण उत्पन्न होता है। ऐसे समय में आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने संकल्प पर कायम रखती है। आज मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलापन और प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ रहा है। कई लोग इन परिस्थितियों से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं बल्कि समस्या को और बढ़ाने वाला मार्ग है। आत्मसंयम व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने की क्षमता प्रदान करता है। वह तनाव से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखता है। ध्यान, योग, प्राणायाम, नियमित व्यायाम और सकारात्मक चिंतन जैसी गतिविधियां आत्मसंयम को मजबूत बनाती हैं। मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति नशे की ओर कम आकर्षित होता है क्योंकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वस्थ तरीकों से खोजता है। आत्मसंयम की पहली पाठशाला होता है उसका परिवार, क्योंकि आत्मसंयम का विकास बचपन से ही प्रारंभ होता है और इसमें परिवार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखते हैं। यदि परिवार में अनुशासन, संवाद, नैतिक मूल्य और सकारात्मक वातावरण हो तो बच्चों में आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। दूसरी तरफ यदि परिवार में तनाव, हिंसा या नशे का वातावरण हो तो बच्चों में प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। माता पिता को केवल बच्चों को नशे के दुष्परिणाम बताने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार से भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे उपदेशों में कम, उदाहरणों से अधिक सीखते हैं। आज का युग तकनीकी का युग है, अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव, बदलती जीवन शैली, उपभोक्तावाद, त्वरित सफलता की चाह और साथियों का दबाव कई बार ये युवाओं को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। फिल्में, वेब सीरीज, विज्ञापन कभी कभी नशे को आकर्षक और आधुनिक जीवन शैली के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ये चित्रण युवाओं को भ्रमित कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में आत्मसंयम एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। यह युवाओं को ये समझने में मदद करता है कि वास्तविक सफलता आत्म विनाश में नहीं बल्कि आत्म विकास में निहित है। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो नशा केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं बल्कि व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके कारण असंख्य लोग अपने सपनों, रिश्तों और भविष्य को खो देते हैं। नशा मुक्ति की दिशा में सरकारें, चिकित्सक, सामाजिक संस्थाएं, परिवार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की आधारशिला आत्मसंयम ही है। आत्मसंयम ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाने से रोकती है, कठिन परिस्थितियों में संभालती है और जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। यह न केवल नशे से बचने का साधन है बल्कि एक सफल, संतुलित और सार्थक जीवन की कुंजी भी है।
1: तो दोस्तों, ये थे अनिंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया कि नशा मुक्त जीवन की शुरुआत आत्मसंयम से होती है। सच तो यही है दोस्तों कि अगर इंसान खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाए तो वह जीवन को कई मुश्किलों को आसानी से पार कर सकता है। उम्मीद है कि उनके विचार आपको भी सोचने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों, युववाणी में हमेशा ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो हमारे आज, हमारे कल दोनों से जुड़े होते हैं। अभी हमने स्वस्थ जीवन की बात की, तो अब बात करते हैं ऐसे भोजन की जो ना केवल हमारी सेहत बल्कि आने वाले समय की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। आजकल आपने ब्लू इकोनॉमी का शब्द तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ब्लू फूड्स के बारे में सुना है? दोस्तों, ब्लू फूड्स का मतलब है समुद्र, नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ। इसमें मछली, झींगा और अन्य जलीय खाद्य संसाधन शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया की बढ़ती आबादी के साथ भोजन की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्लू फूड्स भविष्य में पोषण और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, जो कि एक कई हद तक सही भी है। भारत जैसे देश के लिए विषय और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास लंबा समुद्री तट, नदियों का विशाल नेटवर्क और मत्स्य संसाधनों की भरपूर संभावनाएं हैं, और इससे ना

केवल लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सकता है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ हो। अगर हम प्रकृति से केवल लेते ही रहेंगे और उसके संरक्षण पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए टिकाऊ मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस समुद्र की चर्चा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में नौवहन के संदर्भ में की थी, वही समुद्र आज भोजन, रोजगार और भविष्य की संभावनाओं का भी एक बड़ा स्रोत बनकर हमारे सामने खड़ा है। यही तो प्रकृति की खूबसूरती है कि एक ही संसाधन हमें कई तरह से जीवन से जोड़ता है। इस कार्यक्रम की खूबसूरती पता है क्या है कि हम मनोरंजन और जानकारी दोनों पर ध्यान देते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं मनोरंजन की ओर।

स्वागत है दोस्तों, संगीत विराम के बाद एक बार फिर से युववाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम नशा मुक्ति और आत्मसंयम की बात कर रहे थे। हमने ये भी जाना कि सही फैसले और अच्छी आदतें हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नशा आकर हमारे शरीर और खासकर हमारे मस्तिष्क पर क्या असर डालता है? दोस्तों, मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब का संबंध मस्तिष्क से होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी मस्तिष्क पर पड़ता है। नशे के कारण व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, कई बार निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और व्यक्ति सही गलत का अंतर समझने में कठिनाई महसूस करता है। पढ़ाई, काम और रिश्तों पर भी इसका असर दिखाई देने लगता है और यही कारण है कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, युवा अवस्था वह समय है जब हम अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। ऐसे में अगर हमारा ध्यान लक्ष्य से हटकर नशे जैसी आदतों की ओर चला जाए तो हमारे सपनों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसलिए जागरूक रहना और दूसरों को भी जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मजबूत शरीर जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है स्वस्थ और सकारात्मक सोच वाला मस्तिष्क। जब हमारा मन और दिमाग स्वस्थ होते हैं तभी हम अपने सपनों को सही दिशा दे पाते हैं। इसी संदेश के साथ कि स्वस्थ मस्तिष्क ही सफल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, अब समय हो गया है एक और मधुर संगीत विराम का।

वेलकम बैक दोस्तों, अब पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में, जहां हम जानेंगे आज के सवाल का उत्तर। तो दोस्तों, आज का सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के अलावा 25 जून को और क्या मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है कि 25 जून भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की जयंती के रूप में भी याद किया जाता है। साथ ही भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के जयंती भी आज ही मनाई जाती है। दोस्तों, दोनों ही व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र और जनसेवा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किए जाते हैं। और अब बारी है आज के टिप ऑफ द डे की। दोस्तों, आत्मसंयम कोई बंधन नहीं बल्कि वह ताकत है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की आज़ादी देती है। चाहे सोशल मीडिया हो, समय का उपयोग हो या किसी भी प्रकार का प्रलोभन, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वही अपने लक्ष्य के सबसे करीब पहुंचता है। दोस्तों, आज हमने समुद्र की राहों से लेकर जीवन की राहों तक का सफर तय किया, नौवन स्वतंत्रता की बात की, नाविकों के योगदान को जाना, नशा मुक्ति में आत्मसंयम का महत्व समझा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सपनों की दिशा भी खुद तय करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला भी बनाए रखेंगे, मैं रोशनी शर्मा आपसे विदा लेती हूं। याद रखिए, समुद्र की लहरें हों या जीवन की चुनौतियां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपना रास्ता बनाना नहीं छोड़ते। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

नमस्कार किसान भाइयों, बहनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं अनुराधा अग्रवाल आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीणलोक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी एक व्यक्ति, परिवार या गांव का नहीं बल्कि पूरे समाज या देश के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। विषय है स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता। साथियों, एक पुरानी कहावत है ना कि स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता ही स्वास्थ्य का आधार है।

वास्तव में स्वच्छता केवल साफ सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी का भी परिचय देती है। जिस घर, गांव या शहर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, वहां बीमारियां भी कम होती हैं, वातावरण भी सुखद रहता है और लोगों का जीवन भी अधिक स्वस्थ और खुशहाल बना रहता है। साथियों, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे, परिवार स्वस्थ रहे, बच्चे बीमार ना पड़े और हमारा गांव विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने अंदर एक छोटी सी आदत को डाल लें। वह आदत है स्वच्छता की, यानी कि साफ सफाई की। साथियों, आज हमारी जीवन शैली पहले से काफ़ी बदल गई है। हम लोग पहले से ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं, विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारे पीछे छूट रहा है, वो है हमारा वातावरण। आपको क्या लगता है साथियों, क्या हमारा वातावरण वास्तव में साफ और स्वच्छ है? यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा विकास अधूरा रह जाता है। भाई, आज भी हमारे देश में अगर आप घर से बाहर निकलें तो आपको जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे जाएंगे, नालियों में कचरा जमा होगा, सड़कों पर कचरा पड़ा होगा। ये हमारे देश की छवि को तो खराब करता ही है, साथ में बीमारियां भी लाता है, प्रदूषण भी बढ़ाता है और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। गंदगी साथियों देखने में ही सिर्फ खराब नहीं लगती, बल्कि ये अनेक बीमारियों को भी जन्म देती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग घर के अंदर तो साफ सफाई रखते हैं, लेकिन घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। ये कूड़ा कई बार नालियों में जाता है और नालियों का पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से मच्छर और मक्खियां पनपने लगते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और भी कई तरह की बीमारियाँ। भैया, पता चलता है कि भैया हमने साल भर में जितना कमाए नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हमने बीमारियों के इलाज में खर्च कर दिया। साथियों, एक कहावत है ना कि रोग से बचाव इलाज से बेहतर है, और रोगों से बचाव का सबसे आसान तरीका है कि अपने आसपास सफाई रखें। और वैसे भी अब साथियों बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, भाई ऐसे में आप भी जानते हैं कि जगह जगह जलभराव भी होंगे, और भाई जहाँ जलभराव होगा वहाँ मच्छर तो पनपेंगे ही, और मच्छर पनपेंगे तो बीमारियाँ भी होंगी। ऐसे में साथियों बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे घर हो, खेत हो, पशुशाला हो, गाँव की गलियाँ हो, जहाँ पे भी हो हम सफाई का ध्यान रखें। हमारे खेत में जो प्लास्टिक के रासायनिक अवशेष या कोई भी कचरा है उसका सही तरीके से प्रबंधन करें, पशुशाला की नियमित सफाई करें, पशुओं के आसपास गंदगी इकट्ठी ना होने दें, पशुओं को साफ पीने का पानी दें, पशुशाला में जो जैविक अवशिष्ट और गोबर है उससे खाद बनाएं, जिससे पशुशाला भी साफ रहेगी और जो हमारी जो खाद बनेगी और उस खाद को अगर हम अपने खेतों में डालते हैं तो फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। साथियों, स्वच्छता का संबंध केवल हमारे स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि हमारी पहचान और सम्मान से भी है। जब कोई व्यक्ति साफ सुथरे गांव में जाता है तो वहां के लोगों की जागरूकता और अनुशासन की प्रशंसा करता है। देखा जाए तो स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव की पहचान होती है। और भैया, हमारी सरकार भी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह के अभियान चला रही है, लेकिन ये अभियान के तभी सफल हो सकते हैं जब उसमें जन भागीदारी भी हो। यदि हर व्यक्ति अपने घर, गली और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने का संकल्प ले तो बदलाव निश्चित है। तो आइए साथियों, आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे, स्वच्छता का दीप हर घर में जलाएंगे, साफ रहेगा गांव हमारा, स्वस्थ और खुशहाल होगा देश हमारा। आइए साथियों, इसी के साथ अब मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं संवेद स्वर में ये गीत।

0: साथियों, किसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन और उसकी मिट्टी होती है। यदि मिट्टी स्वस्थ है तो फसल भी अच्छी होती है और उत्पादन भी बढ़ता है, साथ ही साथ किसान की आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन आजकल साथियों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया है, असंतुलित खेती होती है और मिट्टी की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है साथियों कि हम प्रभावी मृदा प्रबंधन को अपनाएं। अगर आप भी इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो सुनिए आज की ये भेंट वार्ता कि कैसे करें प्रभावी मृदा प्रबंधन। वार्ताकार हैं डॉक्टर मोहनलाल दोतनिया और भेंट करता है अनिंद्र सिंह।
1: किसान भाइयों, हम किसान लोग खेती तो करते हैं लेकिन शायद खेती को खेती के तरीके से नहीं करते। यहाँ मैं लिए कह रहा हूँ कि खेती करने के लिए किन बिंदुओं का, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है, वो शायद हम उन पर विचार नहीं करते, उनको ठीक से समझते नहीं। भाई, अगर हमें खेती करनी है तो हमें खेत से पैदावार लेनी है और खेत की मिट्टी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस खेत से पैदावार ले रहे हैं उस खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो, उस खेत की मिट्टी का प्रबंधन करना ये एक किसान की जिम्मेदारी है। अन्नदाता अन्न तभी उपजा सकता है जब उसके खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो, तो उसका उत्पाद बेहतर होगा। और मिट्टी का स्वास्थ्य किस तरह से बेहतर तरीके से हम मैनेज कर पाएँ, उसका प्रबंधन कर पाएँ, ये हमारे लिए एक चुनौती ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम उसको बेहतर तरीके से समझ लें तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। इन सब बातों पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मोहनलाल दोतनिया जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, शायद किसान साथियों को एक विशिष्ट तरीके से, आप चूंकि कृषि के वैज्ञानिक हैं, उन बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं, आज हम चाहेंगे कि हमारे किसान साथियों को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताएं कि ये क्या है और क्यों जरूरी है।
2: जी सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अच्छी फसल उत्पादन तथा लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेने के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को बनाए रखने के लिए जो प्रबंधन करते हैं मृदा का, उसको हम मृदा प्रबंधन कहते हैं।
1: जी,
2: अब आजकल बार बार यही आ रहा है कि स्वास्थ्य प्रबंधन क्यों किया है? तो आजकल जो प्राकृतिक संसाधनों की जो गुणवत्ता में जो गिरावट आई है और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी फसल को जो नुकसान हो रहा है या जो मृदा में चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण हम अच्छी फसल उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये है कि मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें।
1: जी,
2: कोई भी फसल उत्पादन होता है तो उसको एक मृदा की अम्लीय है, एक क्षारीय है, उसकी क्षमता देखी जाती है,
1: किस तरह की मिट्टी है,
2: किस तरह की मिट्टी है।
1: जी,
2: सीधी भाषा में तो वो मिट्टी या तो लवणीय होगी या क्षारीय होगी।
1: ये पीएच मान तय करता है कि मिट्टी की प्रकृति क्या है।
2: जी,
1: क्षारीय है या अम्लीय है।
2: जी सर, जी सर। तो अगर मान लो उसका पीएच जो मान है वो 8.5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि उसमें जिप्सम वगैरह जो डालेंगे, और अगर मिट्टी का पीएच मान आपके 6-5.5 है तो फिर हम उसमें चूने का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई मिट्टी है उसमें जो कार्बन की मात्रा है वो अगर आपका 0.5 से कम है तो उसमें हम गोबर की खाद अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कुछ मिट्टियां हैं जिनमें नमी नहीं होती तो उसमें जल प्रबंधन करेंगे हम। तो इन सब चीजों का हम समेकित करेंगे कि उसमें पानी भी आ जाए, मिट्टी के स्वास्थ्य भी आ जाए, पोषक तत्व भी आ जाए और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के कारण जो सूक्ष्म जीव है उनका भी प्रबंधन हो, तो इन सबको प्रभावी तरीके से करना ही मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कहलाता है।
1: आपका कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी के जो भी कंपोनेंट्स हैं इन सब का प्रबंधन करने की जरूरत होती है, तब हम बेहतर तरीके से मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं।
2: इसीलिए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, वो जोर दे रही है कि मृदा का स्वास्थ्य प्रबंधन करे। उसके लिए हम कई ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं।
1: अभी कुछ दिन पहले अभियान जो चला था मृदा स्वास्थ्य परीक्षण का।
2: जी सर,
1: जिसमें सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए गए थे, वो मिट्टी की जाँच करवाई गई। तो ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में ये सॉइल हेल्थ टेस्टिंग है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या किस तरह से रोल निभाती है?
2: 17 पोषक तत्व हम अनुशंसित करते हैं कि 17 पोषक तत्व एक
1: मिट्टी में होने चाहिए।
2: मिट्टी में होना चाहिए।
1: जी,
2: जो पोषक तत्व है वो कितना है, उसके बाद में उसकी उपलब्धता कितनी है पौधे के लिए।
1: इसको हम किसान भाई ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई चीज खानी है या खिलानी है किसी को, तो पहले तो ये पता हो कि हमें जिसको खिलानी है वो कितना भूखा है,
2: कितना भूखा।
1: दूसरा ये पता हो कि हमारे पास खिलाने के लिए कितना है, कितना खिला सकते हैं। तो वो दोनों चीजें समझने की जरूरत।
2: तो किसी भी फसल को जो उर्वरक देने हैं तो पहले ये देख ले कि मिट्टी में कितना है।

0: उतना जितना है उससे ज्यादा अगर फसल को चाहिए तो उतना कम करके डाल दें।
1: बिल्कुल।
0: और मृदा परीक्षण को हम बार बार जोर इसलिए देते हैं कि एक तो इसमें क्या है कि मृदा परीक्षण से अवेयरनेस बढ़ता है किसानों के बीच में, दूसरा अगर आप कोई पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में डाल रहे हो तो दूसरा जो पोषक तत्व है हो सकता है उसकी उपलब्धता वो कम कर देगा, इम्बेलेंस कर देगा। फसल में क्या है कि ज्यादा डालने पर भी नुकसान होता है और मिट्टी का भी स्वास्थ्य है वो गिरता है। जैसे अगर बार बार आपने रासायनिक खाद उपयोग करे तो आपकी मिट्टी हार्ड हो जाएगी, उसमें जो पानी की जो परकोलेशन है जो पारगम्यता है वो कम हो जाएगी, उसके अलावा जो सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा कम हो जाएगी, केचुए की कम हो जाएगी। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि जब भी पोषक तत्व या रासायनिक खादों के द्वारा दिया जाए तो आप गोबर की खाद भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ले।
1: जी जी जी। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने से उसके बहुत सारे जो दुष्परिणाम है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं।
0: जी सर।
1: मिट्टी का स्वास्थ्य का हमें चिंता शायद नहीं है, लेकिन हम उत्पादन ज्यादा लेने की प्रकृति में रासायनिक खादों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गई है। तो इसका निदान क्या है? आपने कहा कि गोबर की खाद मिलाएं, वो एक विकल्प हो सकता है, और क्या वो चीजें हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकती हैं रासायनिक खादों के अलावा?
0: सर, जैसा कि मैंने बताया कि मृदा का जो स्वास्थ्य है वो तीन कारणों पे मुख्यतः निर्भर करता है। पहला भौतिक गुण में, जैसे पीएच मैंने पहले बताया आपको, एक होती है विद्युत चालकता कि मिट्टी में अगर करंट है वो किस प्रवाह से बहेगा,
1: जी
0: वो निर्भर करता है आपका नमक का मात्रा कितनी है। दूसरा आपका वो होगी रासायनिक, रासायनिक में आ गए कि आपके पोषक तत्व कितना है, नत्रजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है। और तीसरी होगी आपका जैविक गुण कैसे है।
1: अच्छा।
0: कि उसमें सूक्ष्म जीव कितने हैं, सूक्ष्म जीव जैसे हम गोबर की खाद या कोई भी पोषक तत्व देते हैं किसी भी रासायनिक, तो वो क्या करता है छोटे भागों में तोड़ता है और तोड़ने के बाद में भी वो छोटे छोटे कण है वो जड़ों के द्वारा पौधे के अंदर जाता है।
1: जी।
0: तो तीन ये जो गुण है उन पर निर्भर करता है मृदा का स्वास्थ्य। अब बात है कि इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको प्रभावी ढंग से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि हमेशा मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो हमेशा बनाए रखें। आप जितना भी कार्बन उपलब्ध है, गोबर की खाद है, चाहे हरी खाद के द्वारा, चाहे जीवाणु खाद के द्वारा, आप हमेशा उसको रासायनिक खादों के साथ में इसका भी प्रयोग करें। और अनुमान हम ये बताते हैं कि गोबर की जो खाद कितनी देनी चाहिए, तो 2.5 से 3 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के लिए हम कहते हैं कि इतनी आपके पास है तो दीजिए, और अगर फिर भी नहीं है तो 1 से 2 टन तो आप जरूर आप दीजिए। इसके अलावा हमेशा जो फसल का जो अवशेष है वो खेत में छोड़ दीजिए। अगर आपको पशुपालन करते हैं तो काट लीजिए, लेकिन नहीं है तो आप फिर उसको बेहतर ढंग से उसको प्रबंधन करिए, उसको जलाइए मत, उसको दबा दीजिए उसमें। तीसरा है कि आप जब भी फसल के पोषक तत्व आप प्रयोग में लें तो मृदा जो परीक्षण की रिपोर्ट है उसके आधार पर लें, ना तो ज्यादा ना कम आप।
1: जी।
0: इसके अलावा कम जुताई करें। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि ज्यादा जुताई करते हैं और रबड़ बना देते हैं अपने खेत को, वो नहीं करें, क्योंकि उसमें जो गोबर की जो खाद है या जो कार्बनिक खाद है या सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा जो कार्बन की मात्रा वो कम हो जाती है। और तीसरा कि जल प्रबंधन करें, क्योंकि जल प्रबंधन होने से क्या है, जो सूक्ष्म जीव या जो भी अपना जो भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व उनका एक जो चक्कर चलता है वो बनाए रहता है
1: पानी के थ्रू।
0: और अगर किसान भाई लंबे समय तक हम मृदा स्वास्थ्य का अगर देख रहे हम कर रहे हैं तो फिर हमें समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसमें जाए, चाहे वो हरी खाद हो, जीवाणु खाद हो, रासायनिक खाद हो, सबका एक कंपोनेंट लेके हमको चलना पड़ेगा।
1: मतलब ये है कहने का कि किसान को ये समझना पड़ेगा कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हमारी मिट्टी में हमेशा बनी रहे, वो कैसे बनाए रखनी है वो हमें तय करना है, वो हमें साइकिल के थ्रू करनी है कि पहले हमने कभी गोबर की खाद यूज की है तो कभी हरी खाद यूज कर लें, कभी तो वो एक ही चीज को ना रिपीट करें बार बार, उसका एक चक्र बना लें,
0: विविधीकरण
1: जिसको आप कह रहे हैं, और गहरी जुताई बहुत ना करें, और जो जलाने की बात आपने कही है कि फसल के जो अवशेष हैं वो कतई ना जलाएं, उससे तो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। और कोई चीज अगर आपको लगता है कि रह गई हो किसान साथियों को बताना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
0: इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि प्रभावी मृदा स्वास्थ्य अगर आपको रखना है तो आपको मिट्टी में नमी भी रखनी पड़ेगी।
1: मिट्टी की नमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है,
0: क्योंकि उसी में सूक्ष्म जीव जो है वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, जो गोबर डाला है वो जो सूक्ष्म जीव उनके लिए खाना है।
1: जी जी।
0: तो खाना उपलब्ध भी तो होना चाहिए। अगर हमने डाल दिया और अगर आपका खेत सूखा है तो वो खाद किसी काम में ना फसल को काम में आएगा ना जीवों को काम, जो सूक्ष्म जीव उनका काम में आएगा।
1: तो कहने का मतलब है किसान साथियों को अगर जीवाणु खाद उपयोग में लानी है तो नमी जरूरी है मेंटेन करना। किसी भी तरह की अगर खाद डालते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो तभी आपको फसल में दिखाई देगा या खेत में दिखाई देगा जब आप उसमें भरपूर नमी जो होनी चाहिए वो आप मेंटेन करके रखें।
0: जी सर।
1: तो ये कुछ चीजें जो किसान साथियों को आपने बताई, खेत की जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो जरूरी है, डॉक्टर साहब आपने किसान साथियों को बहुत ही बृहत

0: तरीके से जो जानकारी दी है अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारी भेंट वार्ता, कैसे करें प्रभावी मृदा प्रबंधन, और ये भेंट वार्ता हो रही थी डॉक्टर मोहनलाल दोतनिया और अनंत सिंह के बीच में। आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल, जाइएगा नहीं।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, अब बात करते हैं हमारे कृषि क्षेत्र में होने वाले नए खोज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स को ऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित नैनो उर्वरकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 500 लीटर नैनो यूरिया की एक बोतल लगभग एक बोरी यूरिया के बराबर प्रभाव देती है। इससे उर्वरक की खपत भी कम होती है और मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। इसके बाद साथियों, बात करती हूँ मैं डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक के बारे में, जिसको कि हम DSR भी कहते हैं। DSR यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक एक ऐसी तकनीक है कि जिसमें हम धान की रोपाई करने की बजाय सीधे हम बीजों को बो देते हैं। इससे क्या होता है, इससे पानी की बचत भी होती है और मजदूरी की लागत भी कम होती है। तो अब आइए साथियों, अब एक नज़र डालते हैं आज के मंडी भाव, आगरा मंडी के ताज़े भावों पर। तो आगरा मंडी में आज गेहूं का भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2820 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में, और सरसों का भाव 6450 रुपये से लेकर 7730 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में रहा। आलू 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल और प्याज 700 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास कारोबार करती दिख रही है। चना का भाव 5875 रुपये प्रति क्विंटल से 7243 रुपये प्रति क्विंटल, और मक्के का भाव 1850 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2650 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथियों, जान लेते हैं कि आगरा मंडल में आज का मौसम कैसा रहा। तो आगरा मंडल में साथियों, आज दिन भर गर्मी और उमस भरा दिन रहा, जिससे अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री के बीच बना रहा। शाम के समय ऐसी उम्मीद है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश होने की भी संभावना है। आइए साथियों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साथियों, अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारे कार्यक्रम से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जैसे कि मिट्टी का प्रबंधन कैसे करें, स्वच्छता का महत्व, किसी क्षेत्र में नई खोज, मंडी भाव। आगे भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी अनुराधा को अनुमति दीजिए। राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

आदि अपने विचार रखने का अधिकार और समानता का संदेश देता है। लेकिन मित्रों, इतिहास में एक ऐसा भी समय आया जब इन अधिकारों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। जी हाँ, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे संविधान हत्या दिवस की, जो हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। दरअसल 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू किया गया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित हुआ। दोस्तों, उस दौरान लगभग 21 महीनों तक कई नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित रहीं, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, साथ ही बहुत से विपक्षी नेताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि उनके विचार और भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने पर रोक लगा दी गई। श्रोताओं, संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य इसी दौर को याद करना है, ताकि हम समझ सकें कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही ये दिवस हमें याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। साथियों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक हों, अपने अधिकार जानें और कर्तव्यों का पालन करें। हमें संविधान में बताए गए मूल्यों, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हम सभी अपने संविधान का सम्मान करें, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा में हमेशा सजग रहें। इसी संकल्प के साथ लेते हैं एक छोटा सा संगीतमय अंतराल और सुनते हैं ये गीत।

मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी छवि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे और हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, और ठीक होना भी चाहिए क्योंकि खुशी खुशी सुकून के साथ जीवन जीना ये अधिकार हम सभी को है। अरे भाई, आखिर हम एक लोकतांत्रिक देश में जो रहते हैं, और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी इच्छा से पढ़ने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, बोलने के लिए और अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, बस हमारे किसी भी काम से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार और आज़ादी में रुकावट ना हो। साथियों, हमारा संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि ये हमारे अधिकारों, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव है। संविधान हमें बोलने की आज़ादी

दोस्तों अब समय है आपसे आज का प्रश्न पूछने का। बताइए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे इसी कार्यक्रम में आगे मिलेगा, इसलिए कार्यक्रम में बने रहें और ध्यान से हमारा आगे का कार्यक्रम सुने। हाँ तो मित्रों, आज का दिन एक और कारण से विशेष है, क्योंकि आज हमारे देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती है। ये हमारे 8वें प्रधानमंत्री थे। सन 1989 से 1990 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। इनको सामाजिक न्याय और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जाना जाता है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बहुत सख्त थे। दोस्तों वीपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में केंद्र सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनकी चर्चा आज भी होती है, खासकर समाज में पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अधिक अवसर उपलब्ध कराना। श्रोताओं, वीपी सिंह का जीवन हमें ये संदेश देता है कि नेतृत्व वही सार्थक है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का प्रयास करे। और अब जानिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो साथियों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश में की चौथी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। और श्रोताओं, आप जानते हैं इनका जन्म भी आज के ही दिन यानी 25 जून 1908 को अंबाला में हुआ था। सुचेता जी ने 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ये प्रेरक गीत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज है गुरुवार और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की खबरें। तो आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। हाँ तो मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि निजी स्कूलों में छात्रों को आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। तो भाई, अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे, वो भी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग सीखेंगे। खबर है सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए बड़ा शैक्षिक प्रयोग होने जा रहा है। दूसरी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से है। दरअसल आगरा में ISBT स्टेशन का निर्माण तेजी से हो रहा है और ये महीने भर में तैयार हो जाएगा। इसके बनने से महज 20 मिनट में ताजमहल पहुंचा जा सकता है। साथियों, अगली खबर है

कि समंदर में अजय योद्धा बनने की दिशा में भारतीय नौसेना ने कदम बढ़ा दिए हैं। इनमें 3 नए घातक स्वदेशी युद्धपोत स्टील्थ फ्रिगेट, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे रविवार को नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए। अत्याधुनिक खूबियों से लैस ये युद्धपोत दुश्मनों को पलक झपकते ही सबक सिखाने में सक्षम है। इन युद्धपोतों से नौसेना की ताकत बढ़ गई है और ये समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, अगली खबर ग्रामीण अंचल से है कि देश के गांव की हर सड़क, गली और संपर्क मार्ग को पहली बार डिजिटल पहचान मिलने वाली है। ग्रामीण भारत की गलियों का बनेगा डिजिटल मैप, मिलेगा यूनिक कोड। इससे कई फायदे होंगे। यूनिक कोड मिलने से रास्तों की डिजिटल पहचान आसान होगी, सरकारी योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी और सड़क निर्माण योजनाओं के जल निकासी और मरम्मत के कामों में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड तेजी से पहुंच सकेंगी। साथ ही डाक और ई कॉमर्स की अंतिम छोर तक डिलीवरी भी होगी। श्रोताओं, आज के लिए खबरों में बस इतना ही। आइए अब बात करते हैं सेहत की। तो हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे गोंद कतीरा की। जी हाँ मित्रों, ये चमत्कारी औषधि जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, खासकर गर्मियों में इसका सेवन शरीर को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाता है। साथ ही ये पेट की गर्मी, एसिडिटी, कब्ज और कमजोरी को दूर करने में फायदेमंद है। दोस्तों, इन दिनों चलने वाली लू, पसीने वाली गर्मी में ये तुरंत ऊर्जा देता है। इसमें फाइबर भरपूर होने से इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार बार भूख लगने की समस्या दूर होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, गोंद कतीरा के एंटी एजिंग गुण त्वचा की फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करते हैं। ये बालों को भी मजबूत और चमकदार बनाने में सहायक है। साथियों, इसको लेने का तरीका, रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा पानी में भिगो दे। सुबह तक ये फूल कर अपनी मात्रा से कई गुना अधिक एक गाढ़ी जेली में बदल जाता है। इसे दूध, नींबू पानी या शरबत में डालकर खाया जा सकता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सेहतमंद बने रहें और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: अभी हमारी श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती

0: और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London today, Mr. Goyal said sky is the limit in terms of the economic benefits that will flow from the agreement. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, which will enter into force on the 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: The United Kingdom Free Trade Agreement is helping our industry also evolve, go up the ladder, compete with businesses in the United Kingdom, complement businesses in the United Kingdom where we can work together in global value chains, supporting each other's economy and together becoming a force multiplier.
1: India today hosted the 11 BRICS Energy Ministers meeting in Gurugram, Haryana, under its BRICS Chairship 2026. The Minister of Power said the meeting brought together energy ministers, vice ministers and senior officials from BRICS member countries to discuss key global energy challenges and strengthen cooperation in the energy sector. It added that the meeting concluded with the adoption of the 11 BRICS Energy Ministers' joint communique, reaffirming cooperation in energy security, sustainability, innovation, resilient infrastructure and capacity building. Marking a significant milestone in India's push for defence self-reliance, the Defence Research and Development Organisation DRDO has achieved final operation clearance FOC for the indigenous Netra Airborne Early Warning and Control System. The FOC certificate was officially handed over to the Indian Air Force during a grand ceremony in Bengaluru today, cementing a major upgrade to the nation's airborne surveillance and network-centric

0: आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के इस युग में चारों तरफ चकाचौंध।
1: श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं वार्ता, किशोरों में बढ़ती पलायनवादी प्रवृत्ति। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल कुमार यदुवंशी।
0: आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के इस युग में चारों तरफ चकाचौंध भरा जीवन है। इस वातावरण में किशोरों के सम्मुख हर दिन नई नई जीवन की चुनौतियां तैयार हैं। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नवीन से नवीन करना चाहते हैं। माता पिता, परिवार और समाज की आशाओं के दबाव पर वे खरे उतरना चाहते हैं। आधुनिक युग की इस कड़ी स्पर्धा के वातावरण में जो किशोर अपने आप को ढाल लेते हैं, समय के बदलाव और वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाते हैं, वे सफलता की सीढ़ी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि जो किशोर कड़े परिश्रम के बावजूद कल स्पर्धा भरे जीवन में कुछ नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं, तो असफलता के कारण उनके मन में कुंठा जन्म लेती है। वे सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। कुंठा के कारण उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण वे परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाते और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इस मानसिक असंतुलन के कारण उनके अंदर असुरक्षा की भावना, चिंता, डिप्रेशन,

आदि के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसी कारण कभी कभी उनके अंदर आत्महत्या जैसे विचारों का जन्म होता है। इन नकारात्मक विचारों के कारण उन्हें सभी समस्याओं का बस यही एक समाधान दिखाई देता है। हर पल यही विचार उनके मन मस्तिष्क में खलबली मचाते हैं। वे सोचते हैं कि आत्महत्या ही उनकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है और कई बार वे आवेग में आकर इस दर्दनाक हादसे को गले लगा लेते हैं। इन समस्याओं के कारण ही आज किशोरों में पलायनवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। किशोरों में इस बढ़ती प्रवृत्ति के लिए सिर्फ किशोरों को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, क्योंकि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन और नाजुक पल कहा जाता है। इस अवस्था में किशोरों का झुकाव जिस तरफ मुड़ जाता है वे उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए विकास की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद स्टेनले हॉल ने अपनी परिभाषा में समझाया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो निरंतर व क्रमशः होते रहते हैं। इस अवस्था में किशोर संवेगात्मक रूप से मजबूत नहीं होते, वे विकास की दहलीज पर होते हैं। इस उम्र के किशोरों में क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, माता पिता के नियंत्रण से स्वतंत्र होना, अपनी बातों को शेयर न करना, माता पिता की इच्छाओं का दबाव, नए नए मित्रों के साथ संबंध स्थापित करना, नशा करना, विपरीत सेक्स की तरफ झुकाव, प्रेम प्रसंग आदि प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। किशोरों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाने के बाद उनके मन में अनेक प्रकार की भावनात्मक हलचल होती रहती है। वे अपनी भावनाओं को माता पिता के समक्ष रखना भी चाहते हैं, लेकिन डर, आलोचना, डांट व उपदेश सुनने के भय से वे अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते। वे अपनी भावनाओं का दमन करते हैं और अपनी बातों को अपने मित्रों के साथ शेयर करना उचित समझते हैं, जो एक समय के पश्चात माता पिता, परिवारजनों, समाज और स्वयं किशोरों के लिए गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। माता पिता और परिवारजनों का दायित्व है कि वे किशोरों की इस मानसिक स्थिति को समझें, उन्हें डांटे नहीं बल्कि प्यार और मित्रपूर्वक व्यवहार के द्वारा समस्या का समाधान करने में किशोरों का उचित मार्गदर्शन करें। परिजनों को अपनी दमित इच्छाओं और अनुभवों को किशोरों पर नहीं थोपना चाहिए और अन्य किशोरों से उनकी तुलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किशोर में अलग अलग मानसिक क्षमताएं व रुचियां पाई जाती हैं। वे अपनी क्षमताओं व रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परिजनों और समाज के दबाव के कारण प्रायः वे सही दिशा का चयन नहीं कर पाते। अतः परिजनों का दायित्व है कि वे किशोरों की क्षमताओं और रुचियों को समझकर उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रेरित करें, जिससे उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस अवस्था में किशोरों में समझ का विकास नहीं होता। परिपक्वता की कमी के कारण वे माता पिता को अपना दुश्मन समझते हैं और प्रायः अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने पर प्रायः वे पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि माता पिता के द्वारा कही गई विरोधी बातें या नकारात्मक विचार उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए माता पिता की भूमिका अहम होती है। उनका विश्वास किशोरों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। बस आवश्यकता होती है अच्छे संस्कार, पूर्ण विश्वास, मित्रतापूर्ण व्यवहार और उचित मार्गदर्शन की, जो सर्वप्रथम उन्हें अपने माता पिता परिवार के संरक्षण में प्राप्त होता है। ये सभी बातें किशोरों के साथ जीवन पर्यंत रहती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। आधुनिक परिवेश में माता पिता और परिवारजनों का यह दायित्व है कि वे घर के वातावरण में समय की मांग के अनुरूप बदलाव लाएं, किशोरों का उचित मार्गदर्शन करें और आपसी विश्वास की डोर को मजबूत बनाएं। घर का वातावरण ऐसा रखें जिसमें किशोर अपनी बातों को खुलकर सहज भाव से व्यक्त कर सके, ताकि उनको अपनी समस्याओं का उचित समाधान मिल सके। साथ ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभिभावक किशोरों की भावनाओं को समझे, उनकी बातों को महत्व दे, उचित व अनुचित का बोध कराए। इससे उनमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की भावना का विकास होगा। चिंता व तनाव से मुक्त होकर उचित निर्णय करने की क्षमता का जन्म होगा। जीवन के प्रति उनका रवैया सकारात्मक बनेगा और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, क्योंकि आधुनिक वातावरण के आधुनिक किशोर इस विकासशील भारत का सुनहरा भविष्य है। जीवन की जटिल से जटिल चुनौतियों और कठिनाइयों से पलायन करना समस्या का समाधान नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करने से है। अतः समय समय पर माता पिता, गुरुजनों और अभिभावकों का उचित मार्गदर्शन ही समस्याओं का समाधान है। इसी समाधान से किशोरों में बढ़ती पलायनवादी प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता किशोरों में बढ़ती पलायनवादी प्रवृत्ति। वार्ताकार थे डॉक्टर अनिल कुमार यदुवंशी। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यही लोकतंत्र का आधार है।
2: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए योजना का लाभ, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में

0: में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
1: वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
3: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे, जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज पर अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
1: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
4: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति

0: अधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेशभर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। वहीं 2 कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की नवी तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशुरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा, साथ ही आलमे आशुरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 198.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गाड़ियों में भरने वाला पेट्रोल, कारखानों को चलाने वाला डीजल और घरों में उपयोग होने वाली जरूरत की चीजें जैसे गैस, दवाइयां हमारे देश तक कैसे पहुंचती हैं? दोस्तों, सच्चाई ये है कि इन उत्पादनों का परिवहन समुद्री जहाजों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज समुद्री मार्ग केवल व्यापार का साधन नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी जीवन रेखा बन चुके हैं। तो ऐसे में आइए आज अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के अवसर पर दिल से सम्मान देते हुए याद करते हैं उन रियल हीरोज को जिनके अथक परिश्रम से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचती हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की। दोस्तों, विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। इन जहाजों को चलाने वाले नाविक महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर अपना फर्ज निभाते हैं। वे केवल जहाज नहीं चलाते बल्कि देशों को जोड़ते हैं, व्यापार को गति देते हैं और मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाविक हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, धैर्य, साहस और समर्पण के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए।

0: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की। श्रोताओं, नाविकों के जीवन पर एक निगाह डालें तो हम देखेंगे कि नाविक अक्सर 4 से 9 महीने तक लगातार समुद्र में रहते हैं। इस दौरान अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हैं। इस बीच समुद्र ही इनका घर होता है। हर मौसम का सामना करना होता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी तूफान या बिजली कड़कती हो, इन्हें हर वक्त अपने जहाज पर रहना होता है। जहाज पर हर काम समय और नियम के अनुसार होता है। श्रोताओं, बहुत ही कठिन है एक नाविक का जीवन। समंदर की राहों के ये सच्चे रखवाले हैं, देशों और दिलों को जोड़ने वाले हैं। इनके साहस को हमारा प्रणाम है। नाविक हैं वे, मानवता की पहचान हैं।
1: होक के कलर्स कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद के वो किसी भी जमाने के हों या किसी भी इलाके के हों, वो फिल्म में आकर हर जगह के लिए मौजूद लगते हैं।
2: नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है

श्रोताओं, सभी नाभिक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं और एक जहाज पर कई देशों के लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिससे अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को जानने का इन्हें अवसर मिलता है। दोस्तों, समुद्र में लंबे समय तक रहना आसान नहीं होता। इसके लिए हमारे नाविक धैर्य, साहस और मानसिक दृढ़ता के साथ डटकर खड़े रहते हैं। और जानते हैं इनकी दिनचर्या क्या होती है? श्रोताओं, सूर्योदय, सूर्यास्त, डॉल्फिन, व्हेल और तारों भरा आसमान, ऐसे अद्भुत दृश्य हमारे नाविकों के जीवन का हिस्सा होते हैं।

श्रोताओं, जब हम अपने घरों में बैठकर आराम से जीवन की सुविधाओं का आनंद लेते हैं, तब कहीं दूर समुद्र की लहरों के बीच एक नाविक हमारे लिए आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित पहुंचाने में जुटा होता है। और इसीलिए इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में नाविकों के योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिवस की, यानी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की शुरुआत की थी। लहरों से लड़कर जो दुनिया को राह दिखाते हैं, समुद्र की गोद में रहकर भी कर्तव्य निभाते हैं, व्यापार और विकास की डोर थामे रखते हैं, ऐसे समुद्री वीरों को हम दिल से नमन करते हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं चंद बातों के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। इस वादे के साथ कल फिर मिलेंगे नए विषय और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो साथी पूनम कुलश्रेष्ठ को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, जिसमें आप सुनेंगे एक ही शब्द पर आधारित फिल्म संगीत, और हमारा आज का शब्द है अजनबी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, प्यार तो होना ही था फिल्म से, उदित नारायण आशा भोसले की आवाजों में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
2: सिर्फ सपना ही नहीं,

श्रोताओं, प्यार तो होना ही था फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गुलजार का गीत सोनू निगम की आवाज में, जाने मन फिल्म से।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना आई प्राउड टू बी इंडियन फिल्म से, सुप्रियो और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीत लिखा था जय वर्मा और डब्बू मलिक ने, संगीत डब्बू मलिक का था। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार का गीत, उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में, दिल से फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में गुलजार का गीत आपने सुना उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में। इस गीत को हमने लिया था फिल्म दिल से। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम शब्द गीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, ये एक बार फिर से सुनते हैं फिल्म संगीत और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत एक दूजे के लिए फिल्म से लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में महबूब की मेहंदी फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल लिखी थी आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को

फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी या तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभा

0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ।

0: Sub Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July, tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तिजारती मुआहिदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहिदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहिदों में सबसे जामे मुआहिदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती समझौते के निफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा अहम मादियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने आज भारत में अमेजन की $48 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एनडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्ज ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी, ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़िश्ता एक सदी में वेनेजुएला में आने वाले सबसे ताकतवर जलजलों में शुमार होता है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। कई इमारतों को खाली करा लिया गया, जबकि जलजले के असरात ब्राजील के अमेजोन इलाके में महसूस किए गए, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। इस दौरान वेनेजुएला की

ने जलजले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सताइश करते हुए कहा कि यह मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान तआवुन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम ने मोदी के ताजियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में तआवुन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी और जखीरा अंदोजी ज्यादा खतरात मोल लेने और सोशल मीडिया के दौर की मुनासबत से की जाने वाली सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली के लिए जेजू फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इख्तिलाफात पर जोर देने के रुझान में इजाफा हुआ है और उन्होंने मजीद कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से अपने आप में ऐसी इम्तियाजी खसूसियात की हौसला अफजाई होती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि COVID-19 दहशतगर्दाना वाकयात या इंतहाई मौसमियाती वाकयात जैसे चैलेंजों से निपटने की गरज से बैन अक्वामी ताउन और इश्तराक की जरूरत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर अतियात में मुबैना खुदबूज से मुतालिक केस के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ जोन के डीजी परवीन कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि तीन अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराने के बाद एक FIR दर्ज की गई है। FIR में कुल 8 अफराद को नामजद किया गया है, हालांकि इनमें कोई बड़ा या नुमाया नाम शामिल नहीं है। 6 मुलजिम मुबैना तौर पर कैशियर बताए जाते हैं। ये कार्रवाई एक खसूसी तहकीकाती टीम SIT की जानिब से अपनी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की गई है। ये छानबीन राम मंदिर को मिले अतियात के मामले में मुबैना बेजाबतगियों से मुतालिक है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की मीटिंग के मौके पर ईरान के पेट्रोलियम के वजीर मोहसिन पाकनेजाद से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पुरी ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने तवानाई के शोबे में तआवुन के लिए मौके के बारे में गौर खोज किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुजाकरात साझेदारी और बाहमी तौर पर मुफीद रवाबित के जरिए तवानाई की यकीनी फराहमी में इजाफे के लिए अहदबंद है। भारत ने आज ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा नायब वजरा और सरकर्दा ओहदेदारों ने एक जगह जमा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वें मुश्तरका एलामिया को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारियत, इख्तरा, इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा और सलाह साजी से मुतालिक शोबों में ताउन की तौसीक की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमू, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफहात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2,500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबित 2026 का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 सफहात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट या इसकी तजदीद की फीस 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तत्काल के तहत इसकी फीस 6,000 रुपये होगी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 36 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये और 60 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये है। अगर 36 सफहात वाला पासपोर्ट गुम या खराब हो जाता है तो इसके बदले नया आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए 5,000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 60 सफहात वाले गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट हासिल करने की फीस 6,000 रुपये होगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें भारतीय रेलवे को मुख्तलिफ अकसाम की अशिया की बारबरदारी के लिए सबसे पसंदीदा जरिया बनाने के लिए मुजवजा इसलाहात पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाल ही में सीमेंट और नमक जैसी अशिया की तरसील के लिए तैयार किए गए खसूसी वैगनों की कामयाबी ने इस अहमियत को वाजे किया है कि वैगनों का डिजाइन
سند کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔

अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्दबुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश एसआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 1 जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2500 रूपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5000 रूपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
2: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन से हर हाथ में दिखे कि स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर GB। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है।

0: टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर
1: जी
0: एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है,
1: जी
0: हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड पे आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है भारत में। अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ हमारी तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
0: देखिए एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक यूपीआई सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की विश्व की जब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती है। इसको एग्जाम्पल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए, तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना है
1: जी
0: ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
1: और बिल्कुल इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
0: क्योंकि तो हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूं, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहा हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस एप्लीकेशन रिट्रीवल एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है।
1: बिल्कुल
0: आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
1: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इंपॉर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
0: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फना
1: जी
0: दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है।
1: जी
0: पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का

0: रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे। और भी एरिया है जैसे असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया। उन्होंने आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर यहाँ, R&D डिजाइन यहीं होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM ARM ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, और उनको 1400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए। ये जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा AI की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और AI के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो हमें AI टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास AI की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और AI कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी IT कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया AI के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। AI क्वांटम मिशन पे आइए, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपका वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया जिसका आउटले भी करीब करीब 350 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सब को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं, हम 2015 में 81वें थे, अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो UN यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इम्प्रूवमेंट। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इम्प्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज है उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर

0: है 9289094044।
1: कंट्री वाइज

0: रात्रि के 10 बज चुके हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं साहित्यिक पत्रिका सर्जना, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वार्ताकार होंगे प्रोफेसर रामवीर सिंह। इसके अलावा आप सुनेंगे कहानी जल देवता। कहानीकार होंगे पवित्र कुमार शर्मा। कार्यक्रम के अंत में सुनिएगा डॉक्टर त्रिमोहन शाक्य तरल से काव्य पाठ। कार्यक्रम में ये सबसे पहले सुनते हैं वार्ता ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वार्ताकार हैं प्रोफेसर राजवीर सिंह।
1: मनुष्य संसार में सबसे अधिक विवेकशील प्राणी होता है। सद और असद, विगत और आगत का ज्ञान उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है, इसलिए उसे सृष्टि का तिलक भी कहा जाता है। संसार में जन्म लेने से लेकर विदा होने तक वह अनेकों दायित्वों के प्रकोष्ठों में प्रवेश करता है। यह प्रकोष्ठ ही उसके आगमन की परीक्षा लेते हैं। उससे अपेक्षा भी की जाती है कि वह परीक्षा में न्यूनतम न रहकर सर्वोत्तम बने। इससे दोनों ही लाभान्वित होते हैं, व्यक्ति भी और समष्ट भी। रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक ही कहा था, होता विदा जगत से इसको कुछ रमणीय बनाकर, साथ हुआ था जहां वहां से कुछ आगे पहुंचाकर। अतः सृष्टि अथवा समष्टि की रमणीयता बनी रहे, यह कर्तव्य बोध व्यक्ति के साथ जीवन भर संश्लिष्ट रहता है। इसे हम योगदान भी कह सकते हैं और उदाहरण भी बना सकते हैं। निर्लिप्तता और आकर्षण उसके सामने रहते हैं, केवल अंतःकरण ही इनमें से विकल्प चुनता है। यह विकल्प ही मनुष्य को श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाता है या अंधेरे गर्त में। यह कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। जस की तस धर दीनी चदरिया इसी विकल्प की ओर संकेत है। जस की तस धर दीनी चदरिया व्यक्तित्व सापेक्ष है, यह सूक्ति संत कबीर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कही थी। शब्द शैली में गायन करते हुए उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और समाज के कार्य व्यापार को देख लेने के पश्चात अपने चरित्र की दृढ़ता को अभिव्यक्त किया था। व्यक्ति का संसार में आना, आने में सहायक कारक, जीवन के दायित्व बोध, धनात्मक एवं ऋणात्मक योगदान, तत्पश्चात प्रयाण ही जीवन चक्र की पूर्णता होती है। संसार में आना जाना तो प्रकृति का नियम है, किंतु इस संसार के साथ व्यक्ति का सामंजस्य होना बहुत कठिन होता है। संसार का आकर्षण व्यक्ति को अंधत्व की ओर खींचता है। मोह, माया, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसे अनेकों विकार लुभावनी मुद्रा में निमंत्रण देते हैं। विरला व्यक्ति ही इनसे बचाव कर पाता है। कबीर ने अपना बचाव किया और सीना ठोकते हुए कहकर इस संसार से विदा ली। दास कबीर जतन सो ओढ़ी जस की तस धर दीनी चदरिया, अर्थात आत्मा के ऊपर लिपटी हुई शरीर रूपी चादर को मनसा वाचा कर्मणा यत्न पूर्वक उसका प्रयोग भी किया और अंतिम समय में उसकी पवित्रता को अक्षुणता प्रदान की। गीता में कहा गया है कि शरीर पुराना होने पर आत्मा उसका त्याग कर देती है, अर्थात आत्मा अमर होती है, शरीर नश्वर होता है। शरीर नश्वर है तो उसमें विकार उत्पन्न होना आवश्यक है, परंतु कबीर का दर्शन शरीर की नई व्याख्या प्रस्तुत करता है कि यह पुराना नहीं हो सकता, इसे यत्न पूर्वक सांसारिक विकारों से असंपृक्त रखना चाहिए। यही श्रेयस्कर होता है, अमरता का सूचक होता है। सांसारिक मलिनता जीव के आगत उद्देश्य को नष्ट कर देती है। इस मलिनता का अभिप्राय यह नहीं है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, दुर्गुणों की भरमार है। संसार में सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। नैतिकता के ईमानदारी, करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा, परोपकार जैसे अनेकों कारक व्यक्ति को अमरता प्रदान करते हैं। यह सूक्ति हमें इन्हीं कारकों को नमन करने तथा आचरण में उतारने की ओर संकेत करती है। महात्मा बुद्ध को तथागत कहा जाता है। राजमहल में पैदा होते हुए भी उन्हें संसार के विकारों का परिचय हो गया। सुख सुविधाएं, कीर्ति, विलास, सम्मान, संपत्ति आदि अनेकों कारक उनके सामने थे, परंतु उन्होंने इन सभी का परित्याग कर दिया। सत्य की खोज, शाश्वत सुख की ललक ने उन्हें आग्रह और दुराग्रह, संचय और निग्रह से दूर रखा था, इसलिए उन्हें तथागत कहा जाता है कि वे जैसे थे उसी रूप में संसार से विदा हो गए। भगवान महावीर का पुनीत स्मरण भी इसी श्रेणी में

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में

0: आता है, परिवार की संपन्नता और वैभव के आकर्षण की परिधि अनंत थी। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई अवरोधक नहीं था। फिर भी संसार के अंतिम सत्य अथवा परम सत्य के ज्ञान ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया। वे दया, करुणा, सभी जीवों के प्रति सहिष्णुता, त्याग, इंद्रिय निग्रह आदि अनेक सद्गुणों से आपूरित थे। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा को, अपने शरीर को निर्मलता दी। परिणामतः सृष्टि में उनका आलोक वंदनीय है। इन महापुरुषों से पूर्व भी अनेकों महानुभाव हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मानवता को अलंकृत किया है। रामायण काल में भरत, महाभारत काल में महात्मा विदुर जैसे चरित्र हमारे लिए आदर्श एवं अनुकरणीय हैं। यह सत्य है कि यह संसार कष्टों का भंडार है। मोह और माया की मृग तृष्णा उसे बैठने नहीं देती। सावधान रहते हुए भी वह दुनिया के विकारों से अपने को मुक्त नहीं कर पाता। कहा भी जाता है कि काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजर की लागे है पे लागे है। यह सृष्टि समस्त आनंद का कारक होते हुए भी काजल की कोठरी की तरह है। सावधान रहते हुए भी किसी भी क्षण, किसी भी चेष्टा अथवा किसी भी उपक्रम में व्यक्ति अपने को संलिप्त कर लेता है। परंतु जो महापुरुष होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, उन्हें यह मृग मरीचिका सम्मोहित नहीं कर पाती। इसलिए तो रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सांसारिक आकर्षण ही कुसंग का कारण होते हैं। चंदन जैसा व्यक्तित्व ही इनसे मुक्ति पा सकता है। आज के इस बाजारवादी युग में तो यह मार्ग बहुत कठिन है। आपाधापी से भरे दिन में व्यक्ति आगत प्रातः को भूल जाता है। दैनिक जीवन की अनुकरणवादी आवश्यकताओं के कारण नैतिक मूल्यों का निरंतर क्षरण हमारी संस्कृति के लिए बहुत घातक है। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अधर्म जैसे पर्याय समाज में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। यह सब पहले भी होता था परंतु निंदनीय था, लेकिन आज समर्थन और अनुगमन की प्रवृत्ति ने हमारे ऋषियों, मनीषियों और महापुरुषों द्वारा स्थापित मानदंडों को कलुषित कर दिया है। समाज और प्रकृति के शाश्वत संबंधों की अवहेलना प्रायः प्रतिदिन दिखाई दे रही है। फिर भी इस अंधेरी रात में दीपक की तरह ही सही हमें अपने महापुरुषों को, उनके आदर्शों को नमन करना है। संख्या कम हो सकती है परंतु आशा बड़ी है। नजीर अकबराबादी ने ठीक ही कहा था, कुछ इस तरह चल कारवां के साथ है नजीर, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। आज हमारे सामने रामायण के भरत नहीं है, महाभारत के विदुर नहीं है, तथागत बुद्ध नहीं है, भगवान महावीर नहीं है, कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक नहीं है, परंतु इनके ज्ञान की महाज्योति हमारा पथ प्रदर्शन कर रही है। देश की संस्कृति इस आलोक से जगमग है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असदो मा सद्गमय की अनुगूंज वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सर्वकालिक एवं शाश्वत है। यह आदर्श ही हमारी चादर को जस की तस पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपता आ रहा है। यह कभी मैली नहीं हो सकती। नैतिक मूल्यों की मंदाकिनी का आचमन करने वाले व्यक्तित्व आज भी समाज में न्यूनतम भले ही हैं, लेकिन उपस्थित अवश्य हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी शून्यवत नहीं है। देश और दुनिया इन्हीं का स्मरण करती आई है और करती रहेगी।
1: श्रोताओं, साहित्यिक पत्रिका सर्जना में अभी आपने सुनी वार्ता जस की तस धर दीनी चदरिया। वार्ताकार थे प्रोफेसर रामवीर सिंह। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कहानी जल देवता। कहानीकार हैं पवित्र कुमार शर्मा।
2: रमेश पांचवी कक्षा का छात्र था। वह बड़ा ही शरारती और लापरवाह किस्म का था। उसकी लापरवाही पढ़ाई के मामले में कम, पानी के अपव्यय के मामले में अधिक देखी जाती थी। रमेश की बड़ी बहन नेहा कई बार उसे बता चुकी थी कि जल मनुष्य के लिए जीवन है, यह प्रकृति का हम सभी प्राणियों के लिए वरदान है। हमें किसी तरह पृथ्वी पर पानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन रमेश अपनी दीदी की बातों को प्राय भूल जाया करता था। सुबह टूथब्रश करता हुआ वह पानी का नल खुला छोड़ देता। नेहा उसे डांटती हुई कहती, यह क्या रमेश, जब तुम मुंह में टूथब्रश दबाए हो तो नल को खुला क्यों छोड़ दिया है? देखो पानी बेकार नष्ट हो रहा है, नल बंद करो तुरंत। इस तरह लापरवाही से मंजन ब्रश करने में हर दिन लाखों लीटर पानी नालियों में बह जाता है। इतने पानी से तो जाने कितने ही जीवों की प्यास बुझाई जा सकती है। नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और जल संरक्षण के प्रति बड़ी ही सजग थी। घर में जब भी पानी को कोई व्यर्थ बहाने लगता तो वह क्रोधित हो जाती थी।

उसकी माँ बाजार से सब्जी और फल लेकर आती तो उन्हें उपयोग से पहले धोने लगती तो नया देखती थी कि सब्जी और फल को धोने में माँ नल की टोंटी खोलकर बहुत सारा पानी बेकार बहा देती है, जबकि इस पानी का वृथा बहना रोका जा सकता है और उपयोग में लाए गए जल का पुनः सदुपयोग भी किया जा सकता है। एक दिन नेहा ने जल की बचत करते हुए अपनी माँ को सब्जी और फल धोना सिखाया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर पहले फल धोए और उसके बाद सब्जी को धोया। पात्र में जो पानी उपयोग के बाद रह गया था, उस पानी को नेहा ने अपने बगीचे के पौधों में डालते हुए माँ से कहा, माँ हम इस तरह सब्जी और फल धोने के बाद बचे हुए पानी को बगीचे के पौधों में डालकर जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं। नेहा के पिता के पास एक मोटरसाइकिल और एक कार थी। वे इन वाहनों को हर 2-4 दिन बाद खूब सारे पानी से धोया करते थे और वाहनों को धोने के लिए जल धारा का प्रयोग करते थे। नेहा देखती थी कि ये वाहन धोने में नल का कई बाल्टी पानी बेकार चला जाता है, जबकि बहुत कम जल के उपयोग से इन दोनों वाहनों को धोया जा सकता है। उसने पिता को समझाया, पिताजी आप कार और मोटरसाइकिल धोने में जरूरत से ज्यादा पानी बहा देते हैं। इतने सारे पानी से कई पशु पक्षियों की प्यास बुझाई जा सकती है। एक दिन सूखे गीले कपड़े और एक बाल्टी पानी से नेहा ने पूरी कार चमका डाली और आधा बाल्टी पानी से मोटरसाइकिल को भी साफ कर दिया। केवल 1.5 बाल्टी पानी से दोनों वाहन पूरी तरह जगमग करते हुए चमकने लगे थे। यह देखकर नेहा के पिता ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को शाबाशी दी। नेहा हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि घर के किसी जल पाइप और नल की टोंटी के द्वारा पानी का कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा। यदि वह किसी जगह रिसाव देखती तो तुरंत प्लम्बर बुलाकर या खुद MC लादी लगाकर जल का रिसाव रोक देती थी। नेहा के पिता शाम को जब दफ्तर से घर लौटते थे तो उनकी पानी की बोतल में बचा पानी नेहा की माँ किचन के वॉश बेसिन में फेंक देती थी। एक दिन नेहा ने उन्हें समझाया कि बोतल का बचा पानी आप शाम को पौधों में डाल दिया करें, इससे जल का सदुपयोग होगा अथवा उस पानी को रसोई साफ करने में इस्तेमाल में लाएं। नेहा ने पानी पीने के लिए घर में छोटे गिलास इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। जब उसकी माँ ने इसका कारण पूछा तो नेहा कहने लगी कि बड़े गिलास में पीने के बाद पानी बच जाता है, फिर उसे बेकार ही फेंकना पड़ता है। गिलास छोटा होगा तो पानी बर्बाद होने से बचेगा। एक दिन रमेश जब स्कूल में था तो उसके अध्यापक ने कक्षा के छात्रों को समझाते हुए कहा, बच्चों भारत और दूसरे देशों में जल की भारी कमी है। भारत में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को काफी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। राजस्थान में लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें पानी लाने के लिए पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। वह पढ़ाई के अलावा घर के और भी जरूरी कार्यों के लिए समय निकाल नहीं पाती हैं। पानी की कमी और सूखे के कारण कई किसान अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत रहती है वहाँ बच्चे शिक्षा और खुशी के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। एक दिन नेहा के ग्रामवासी दूधिया ने बताया कि समय पर पानी न बरसने से गांव में पानी की बड़ी किल्लत रहती है। नेहा ने दूधिया को समझाया कि आपको बरसात के पानी का संरक्षण करके रखना चाहिए। गांव में छोटे बड़े तालाब बनाकर उसमें बरसात के पानी को इकट्ठा करना चाहिए तथा घरों की छत पर बरसे पानी को पाइपों के जरिए भूमिगत टैंक में जमा करना चाहिए ताकि वस्त्र धुलाई और पेड़ पौधों की सिंचाई आदि जरूरी कार्यों के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। जल संरक्षण से आपकी फसल और पशुओं की रक्षा होगी तथा जीवन के जरूरी कार्य भी संचित पानी से संपन्न होते रहेंगे। होली के त्योहार पर नेहा पानी की पिचकारी और जल रंगों के बजाय सूखे गुलाल और सूखे रंगों से होली खेलना पसंद करती थी। उसका मानना था कि जल रंगों से होली खेलने में देश भर में प्रतिवर्ष लाखों लीटर पानी बेकार चला जाता है। जिस देश में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हों, उस देश में होली जैसे खुशी के त्योहार पर इस तरह पानी बर्बाद करना ठीक नहीं है। नेहा कभी भी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने बगीचे के पौधों की सिंचाई नहीं करती थी। उसका कहना था कि दोपहर को जल का बाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए पौधों की जड़ों को पूरा पानी नहीं मिल पाता। वह केवल सुबह अथवा शाम के समय ही पौधों को पानी डालती थी। एक दिन नेहा जल संरक्षण विषय पर अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी। रमेश भी वहीं था। नेहा अपने पिता से कह रही थी, पिताजी यूनेस्को संस्था की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। आशंका है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण आने वाले समय में नदियों का जल स्तर कम हो जाएगा। भारत में कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं, उनका जल दूषित हो रहा है। पिछले 20 सालों में धरती के बढ़ते तापमान, ग्रीन हाउस गैसों के असर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के ऋतु चक्र में अल नीनो का असर हो रहा है, अर्थात देश में बरसात कम हो रही है और गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। यह इंसान द्वारा प्रकृति पर किए गए अत्याचारों का नतीजा है। लोगों ने वन उजाड़ डाले हैं, धरती से हरे भरे पेड़ों को

0: काट डाला है। तुम ठीक कहती हो बेटी, नेहा के पिता ने नेहा की बात का समर्थन करते हुए कहा, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की दौड़ में हम जीवन का असली मकसद भूल गए हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत के अंदर लोग पानी की बर्बादी ज्यादा करते हैं। कारखानों के जहरीले पानी को पाइपों के जरिए जमीन के अंदर पहुंचाना भी जल संकट का कारण है। भारत में 3 लाख से ज्यादा बूचड़खाने हैं। इन बूचड़खानों में हर दिन करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। विद्वानों का मानना है कि अगला विश्व युद्ध पानी के एकाधिकार को लेकर लड़ा जाएगा। एक रात रमेश को एक विचित्र सपना दिखाई दिया। सपने में उसके सामने जल देवता प्रकट होकर बोले, रमेश मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम पानी का अपव्यय करते हो और जल को गंदा भी करते हो। वह सपना देखकर रमेश डर गया और सुबह जागने पर उसने अपनी दीदी को उस विचित्र सपने के बारे में बताया। नेहा उससे कहने लगी, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जल एक पावन देवता है रमेश, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। जल का सम्मान करना ही जल देवता का सम्मान करना है। जो लोग जल में कुल्ला मंजन करते हैं, जल में थूकते हैं, जल में कूड़ा करकट और गंदगी फेंकते हैं तथा जहरीले रासायनिक द्रव्य पानी में बहाते हैं, वे जल देवता का बहुत बड़ा अपमान और तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोगों से जल देवता हमेशा नाराज रहते हैं। जल देवता के कोप के कारण ऐसे लोगों की जिंदगी कभी सुखी, शांत और खुशहाल नहीं रह पाती है। पानी की एक एक बूंद कीमती है रमेश। जल ही हमारा जीवन है, जल ही हमारा कल है और जल ही हम सबका भविष्य है।
1: श्रोताओं, साहित्यिक पत्रिका सर्जना में अभी आपने सुनी कहानी जल देवता। कहानीकार थे पवित्र कुमार शर्मा। कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका सर्जना के अंत में आइए सुनते हैं डॉक्टर त्रिमोहन शाक्य तरल से काव्य पाठ।
2: और अब एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पथ

बंद देखें। टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ चुभने वाली पगडंडी है, टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ चुभने वाली पगडंडी है, मेरी गर्माहट तक की सब राहें बर्फीली ठंडी हैं, मेरी गर्माहट तक की सब राहें।

दिल की आंखों से ही समझा जा सकता है, समझदार को सिर्फ इशारों से समझाया जा सकता है। दिल में क्या है, दिल की आंखों से ही समझा जा सकता है, समझदार को सिर्फ इशारों से समझाया जा सकता है। प्रेम अलाउ

जो उन राहों पर फूल नहीं है। और देखिएगा कि गीत को किस ऊंचाई तक ले जा सकता है। अंतिम बंद है। ढूंढ सको तो मानव में ही शिवता मिल जाया करती है, ढूंढ सको तो मानव में ही शिवता मिल जाया करती है। ले

नहीं है। यादों का गीत आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा। ताज के पीछे नदी में नाव जब कोई चलाए तब तुम्हारी

आए। बंदे के पांव लटका कर नदी में जब किनारे बैठता हूं, काश तुम भी साथ होते उस समय यह सोचता हूं। पांव लटका कर नदी में जब किनारे बैठता हूं, काश तुम भी साथ होते उस समय यह सोचता हूं। मस्त कोई लहर मुझको, मस्त कोई लहर मुझको चूम कर जब मुस्कुराए, तब तुम्हारी याद आए, तब तुम्हारी याद आए। सावनी अमराइयों में जब कभी मन घूमता है, देखता है पिकझरों खे में

तब तुम्हारी याद आए, तब तुम्हारी याद आए। बंद देखें कि सांझ हो पुरवा हवाएं तेज होकर चल रही हो, डालियां अलमस्त हो झुक झूम कर हिल मिल रही हो। सांझ हो पुरवा हवाएं तेज होकर चल रही हो, डालियां

तब तुम्हारी याद आए, तब तुम्हारी याद आए। भ्रमर उड़ता हो चमन में, देख कलियों की जवानी। रच रहा हो सृष्टि की जो, फिर वही आदिम कहानी। भ्रमर उड़ता हो चमन में, देख कलियों की जवानी। रच रहा हो सृष्टि की जो, फिर

0: आए तब तुम्हारी याद आए, तब तुम्हारी याद आए। ताज के पीछे नदी में नाव जब कोई चलाए, तब तुम्हारी याद आए, तब तुम्हारी याद आए। बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, साहित्यिक पत्रिका सर्जना में अभी आपने सुना डॉक्टर त्रिमोहन शाक्य तरल से काव्य पाठ। श्रोताओं, इसके साथ ही साहित्यिक पत्रिका सर्जना यहीं समाप्त होती है।

अगर बनाना है देश को महान तो आओ पर्यावरण का रखें ध्यान। जहां हरियाली वहां खुशहाली, जब पेड़ कटता है तो जीवन घटता है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। हम सबका एक ही नारा, साफ स्वच्छ हो देश हमारा।

प्लास्टिक बैग को ना कहीं, भविष्य को हाँ कहीं। जल है तो कल है, पानी कुदरत का अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अगर आप आने वाली पीढ़ी को प्यार करते हैं तो पेड़ लगाइए, पृथ्वी को बचाइए।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। वक्त है शास्त्रीय संगीत का। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुद्ध कल्याण। तो आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी से राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन।

10:30 हो चुके हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुद्ध कल्याण, तो आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी से राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग शुद्ध कल्याण। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय

1.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।